0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ मिर्ची इंस्टा प्यार. और आज मैं आपको शो के शुरुआत में ही बताना चाहती हूँ कि मेरी अरोमा थेरेपी के साथ रिलेशनशिप कब शुरू हुआ था. सो आई एक्चुअली फेल इन लव विद अरोमा थेरेपी जब मैं अपने दो तीन पुराने एक्स बॉयफ्रेंड्स वाले एक्स बॉयफ्रेंड को डेट कर रही थी. एंड बाय द टाइम आर रिलेशनशिप केम टू एन एंड ना, दैट्स व्हेन आई एक्चुअली डिस्कवर्ड कि क्लोरोफॉर्म कितना अमेजिंग होगा इस बंदे के लिए. इसके मुंह पर डालो और बंद कर दो इसकी कॉन्शियसनेस को फॉर अ कपल ऑफ आवर्स. ही हैड स्टार्टेड गेटिंग ऑन माई नर्व्स सो मच एंड दैट्स ऑनेस्टली व्हेन आई डिस्कवर्ड अरोमा थेरेपी. अब आप मुझे बताओ कि जब आप अपने एक्स की फोटो देखते हो क्या चीज सबसे पहले आपको याद आती है, टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल क्या है? हिट मी विद इट, ड्रॉ हिट मी विद इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड माई ऑनेस्ट सजेशन टू यू

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rambana. Murga, murga. La vizba la murga. Mirci, murga. Murga.
1: हेलो,
2: हेलो डॉक्टर सविता से बात कर रही है।
1: तो सविता बोल रही हूँ।
2: डॉक्टर ये एक तो बुढ़ापा आपको दिखाना चाह रहा था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता, तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
1: क्या परेशानी है?
2: न एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता है।
1: तो वो तो भरता ही है।
2: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
1: अच्छा,
2: ये बुढ़ापे में हो गया ना। पानी पीता हूँ ना मैं जब भी।
1: हाँ हाँ।
2: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
1: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
2: प्रॉब्लम में आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
1: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
2: नहीं,
1: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
2: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
1: अच्छा।
2: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
1: अच्छा, कभी लेकिन मैं समझ रही हूँ।
2: हाँ, क्या समझ रही
1: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से। मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
2: डॉक्टर सविता।
1: हाँ जी,
3: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही
1: हूँ।
3: देखा, मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा।
1: अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को।
3: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
1: कुकड़ू को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: कुत्ते के चाटे हुए सैंडविचेस अपनी गर्लफ्रेंड को खिलाने वाले दरिंदे, अगर आप ऐसा कन्फेशन करना चाहते हो मेरे साथ, आई एम नॉट गोना स्टॉप यू बिकॉज टाइम हो गया है फॉर
3: द सीक्रेट बॉक्स,
2: विच काइंड ऑफ मींस कि अगर आपके अंदर थोड़ी भी मतलब द डिजायर टू गेट रोशिफाइड है, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, आई बी हैप्पी टू डू इट फॉर यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टा या FB. एंड मेरे साथ अभी लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो नॉटी गर्ल.
4: हेलो, हाय,
2: हाउ आर यू?
4: आई एम गुड.
2: जूटी, यू आर बेटर देन यू आर. वो सब छोड़ यार, कन्फेशन सुनने पहले.
4: I really need to tell you. Very
2: well. Okay.
4: So my boyfriend and I, we just saw this weird position on the internet where I had to be on the ground, half on the ground and half on the bed, and he had to be behind me. We were like, this looks nice. We'll try it.
2: Okay.
4: Huh. Now the thing is, they did not teach us other aspects of that position. It just looked like that, and we didn't understand it either. So, like while we were doing it, it was good. But then we became too passionate, and I sort of fell. So when I fell, I bruised my back a little bit. But my boyfriend, he fractured his arm.
2: Oh, that's terrible.
4: Yeah. I know. And the thing is, we can't tell people what happened because there's, how do we tell?
2: मुझे तो बड़े आराम से आपने बता दिया कि हमने कहीं पर एक नई पोजीशन देखी थी, फिर हमने ट्राई की और मैं गिर गई और वो गिर गया और मेरी पीट गई उसका हाथ. मुझे तो बड़े प्यार से बता दिया था आपने.
4: बट
2: दैट्स आई थिंक दैट्स आल्सो लाइक कूडोस टू मी ना, कि यू आर लाइक रेडियो पे तो है, मैं मिस्ट्री कॉलर हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ एंड आई विल गेट अवे विद इट.
4: आई एम सो ग्लैड आई टोल्ड यू बिकॉज़ आई एम थिंकिंग ऑफ अ लाइक, हाउ डिड ही ब्रेक हिज आर्म, आई डोंट नो.
2: And how did you break, bruise your back same day? कमरे में गए तो ठीक थे और कमरे से बाहर निकले तो ये ऐसे टूटे फूटे कैसे हैं?
4: Exactly. And my flatmate.
2: तो तुम बोला कि तुम सीढ़ियों से गिर गए थे? हाँ. बोला कि हम सीढ़ियों में किस कर रहे थे और सीढ़ियों में किस करते करते मेरा पैर फिसल गया, तो मैं आई लैंडेड ऑन माई आर्म और या ही लैंडेड ऑन हिज आर्म, तो उसका बाजू टूट गया और मैं पीठ पे गिर गई थी.
4: That we can do.
2: मुझे इसके कितने पैसे मिलेंगे? You're like, मेरी हंसी लगे काफी है. It's okay. You can roshify me.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

डेटिंग के वास्ट यूनिवर्स में अगर एक लेजिट डील ब्रेकर होना चाहिए फॉर एवरीबडी वो ये है व्हेन पीपल डोंट रियली रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट आप क्या काम करते हो. आई जस्ट रिसेंटली स्पोक टू समबडी एंड ही वाज अ कॉलर ऑन द शो एंड ही सेड कि यार मैं एक फोटोग्राफर हूँ लेकिन मेरी बंदी हैज अ प्रॉब्लम विद द फैक्ट कि फोटोग्राफर ज्यादा पैसे नहीं कमाते. तो शी इज सेइंग कि कोई स्टेबल जॉब ढूंढ ले नहीं तो मैं तेरे साथ ब्रेकअप कर लूंगी. नाउ आई थिंक दैट्स रियली डिसरिस्पेक्टफुल राइट. जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं ए द लव हैज टू बी अनकंडीशनल. बी मतलब ये कैसा प्यार है जब आप सामने वाले इंसान का पैशन ही नहीं समझ रहे हो. आई रिमेम्बर जब मैं अपने बुक राइटिंग फेज में थी एंड आई हैव रिटन टू बुक्स थैंक्स तो मेरा देन बॉयफ्रेंड वाज सो इनकरेजिंग. अगर उसने मुझे डिस्करेज किया होता कि बुक राइटिंग की दुनिया में क्या रखा है इसमें पैसे नहीं मिलते रॉयल्टी में कितने ही पैसे मिल जाएंगे तुझे. आई थिंक कि मेरी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इवॉल्विंग स्टेज नहीं मुकम्मल होता इफ माई बॉयफ्रेंड वॉज नॉट सपोर्टिव ऑफ व्हाट आई डू. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर कोई आपकी जिंदगी में है हु इज नॉट ओके विद योर पैशंस हु इज नॉट ओके विद द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू आर बाय एंड लार्ज दैट इज अ डील ब्रेकर. इसके बारे में सोचना नहीं है. जैसे ही एक इंसान आपकी ये बाउंड्री क्रॉस कर दे वेयर दे हैव अ प्रॉब्लम विद what your passion in life is, just ask them to leave. You will thank me for this for the rest of your life. Or thank you bolne ke liye. Aap mujhe dhoond sakte ho Insta par ya FB par. Mera naam hai Mirchi Roshi. Naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E. So go ahead and be the smart person that you are and kahin mat jana jana. Kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई, बजा।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आपके बॉयफ्रेंड के आईक्यू से ज्यादा बड़ी आपकी ज्वेलरी होनी चाहिए दिस विंटर सीजन टू कम. ये है फैशनिस्टास की प्रेडिक्शन फॉर 2026 के गुड बाय मंथ्स, यानी कि अब जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बचे हैं, इसमें जो ज्वेलरी है ना, बड़ी बड़ी चंकी चंकी, मतलब आप इमेजिन करो आंखें बंद करके अपने पार्टनर का सर. Now, you could be a boy or a girl, it doesn't matter. Everyone's into jewelry these days. तो जितना बड़ा आपका पार्टनर का सर है, उससे बड़ी आपकी नेक पीस होनी चाहिए या आपका ब्रेसलेट होना चाहिए. And then it's considered on point jewelry for this season. अब सोचो आपके पास ऐसा कोई पीस है या नहीं. और मैं सोच रही हूँ genuinely, if I could really wear a human being as a jewelry over me, it would be Rakhi Sawant. क्या चीज़ें बोलती है भाई वो बंदी. She's like, आवाज नीचे और 20 कदम पीछे. दिस शुड बी माई मंत्रा फॉर लाइक डेटिंग एप्स के बंदे, क्योंकि जितने भी बंदों को मैं डेटिंग एप्स में मिलती हूँ ना, आई फील लाइक टेलिंग देम दिस कि भाई 20 कदम पीछे रह ले, तो जितना अच्छा फोटोज में लगता है उतना भद्दी रियल लाइफ में लगता है. दैट सेड, आपका क्या ओपिनियन है अबाउट दीज बिग ज्वेलरी पीसेज एंड अबाउट गाइज हुज ईगो इज बिगर देन दीज ज्वेलरी पीसेज? हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, लेट्स टॉक अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, जानू मानू, डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: 13 तरह के लड़के होते हैं इस दुनिया में और 24 तरह के उनके टंटे होते हैं, बट द वंस दैट आई लाइक द मोस्ट आर द शाय गाइज. एंड वन सच शाय गाय हैज सेंट मी अ मैसेज एंड आस्क्ड मी टू कॉल हिम. उसे अपने होने वाला प्यार डिस्कस करना है. लेकिन अगर आपकी भी जिंदगी में कोई ऐसा कष्ट है मित्रों, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो व्हाइल यू सेंड योर नंबर आई एम गोना कॉल सुयश. हेलो.
3: हाय रोशी,
2: हाउ आर यू?
3: मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए.
2: आप कह रहे थे कि आपके जीवन में बड़े कष्ट. मैं सोचा पूछ लेती हूँ.
3: एक्चुअली कष्ट ये है कि अभी मैंने जॉब स्विच करी है.
2: हाँ.
3: मुझे हो गए करीब 6 महीने. और जो हमारा ग्रुप था न्यू जॉइनर्स का, 4-5 लोग थे उसमें. उसमें एक लड़की है, आई डोंट नो, बट बहुत अच्छी लगती है मुझे. और हम एक टीम में तो नहीं है साथ में, पर हम एक बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. हमारी डेली बात भी नहीं होती, हमारी होती है करीब 7-8 में कभी एक बार होती है. और आई डोंट नो कि मैं उसे बताऊं कि ना बताऊं, क्या करूं.
2: आपको पता है कि वो सिंगल है कि नहीं?
3: नहीं, हमारी कभी इस बारे में भी बात नहीं है.
2: तो मेरा सजेशन ये कि आप पहले फिगर आउट करो कि वो सिंगल है कि नहीं, क्योंकि अगर उसका बॉयफ्रेंड है तो थोड़ा अजीब लगेगा ना कि भाई बंदा प्रपोज कर रहा है और लड़की का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड निकला, राइट? सो पहले फिगर आउट करो कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू कि वो सिंगल है या नहीं, या इंस्टा या FB पर ट्राई एंड फिगर आउट वो किस तरह की फोटोज डाल रही है. एक बार आपको पता चलता है कि वो सिंगल है और अगर आप दोनों की बातचीत अच्छी हो रही है, आप लोग अच्छे दोस्त बन चुके हो.
3: हमारी बातचीत जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं काफी डीप कन्वर्सेशन ही होती है.
2: तो हो सकता है वो सिंगल हो, बिकॉज अगर हम एक लड़के से एक बहुत ही डीप मीनिंगफुल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, चांसेस हैं कि हम एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं इफ अ वुमन इज डूइंग दैट विद अ गाय. तो मुझे आपके चांसेस ब्राइट लग रहे हैं. बस एक बार फिगर आउट कर लो वो सिंगल है कि नहीं, और उसके बाद अच्छा सा मौका देख के और बहुत ही अच्छे इन्वायरमेंट में, ठीक है, जिस दिन स्ट्रेस ना हो रहा हो ना उसे ना आपको, बस आजू बाजू मत टेक आई लव यू मत बोलना. मैं सिर्फ गाने का कोटेशन दे रही हूँ आपको. But what I'm trying to say is that tell her that you like her, you want to spend more time with her. Be honest, be upfront. लड़कियों को authentic और honest लड़के बहुत अच्छे लगते हैं.
3: ठीक है, but मुझे ऐसा लालच नहीं है कि वो हाँ ही बोले या साथ रहे. It's just हम लोग friends बने रहे हैं, हम चाहते नहीं कि हमारे दोस्ती में कुछ भी.
2: यार, I feel like कि आप इतने you're such a simple person और आपका प्यार भी उतना ही simple होगा I'm guessing. और अगर वो भी एक simple लड़की है who has deep meaningful conversations with you, then the two of you should give a relationship a shot. Why not? नहीं, मान लीजिए there is a guy in her life, फिर वो attention कम हो जाएगा ना.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

आप हमेशा अपनी नानी की होम रेमेडीज बताते हो, तो ये भी बता दो कि बदलते हुए मौसम में यार मेरे बाल ना काफ़ी झड़ रहे हैं और मेरी लाइक स्कैल्प काफ़ी ड्राई हो रही है और मुझे डेट पर जाना है, एंड आई डोंट वांट कि डेट पर टेबल पे मेरे बाल झड़ रहे हों, क्या करूँ मैं इसके लिए? रोशी के DM से। यू नो आई थिंक कि स्लोली स्लोली इस शो पे मुझे नानी को लाना पड़ेगा, बिकॉज जैसे आप क्वेश्चंस भेजते हो ना कि होम रेमेडी बता दो, मुझे लगता है नानी शुड बी माई कोजॉग, बट नानी के पास एक्चुअली काफ़ी रेमेडीज होती है स्पेशली फॉर ब्यूटी थिंगीज एंड हैक्स फॉर होम। नानी के बाल काफ़ी घने हैं कॉन्ट्ररी टू माई हेयर, एंड दैट्स प्रॉब्ली बिकॉज जब से मुझे याद है ना वेब, मेरी नानी एक बनाना और कर्ड का मास्क लगाती है, सो उसमें वो थोड़ा सा दही डालती है और बनाना मैश करके डालती है, उसे अपने स्कैल्प पे लगाती है 15 मिनट के लिए, एंड लाइक हर 3 दिन में नानी ऐसा करती थी। नानी की स्कैल्प में कभी डैंड्रफ नहीं होती थी एंड हर हेयर वॉज सो गॉर्जियस ऑल द टाइम। इनफैक्ट अभी तक नानी का लाइक इंटायर स्कैल्प एंड हेयर सिचुएशन इज रियली ऑन पॉइंट। ऑल्सो आप ये ट्राई कर सकते हो कि अगर आप बाल अपना हेयर ग्रोथ एक्सेलरेट करना चाहते हो, नानी हर एक को बना के देती थी बनाना और हनी का हेयर मास्क, तो वो बनाना लेती थी उसका पल्प और उसमें वो हनी डालती थी, लोगों को एक ऐसे शीशी में बंद करके देती थी और कहती थी कि इसे 15 मिनट के लिए लगाना, उसके बाद ठंडे पानी से धो लेना और तुम्हारे स्कैल्प में लाइक न्यू हेयर ग्रोथ विल इमर्ज। सो आप इन दोनों में से कुछ भी ट्राई कर सकते हो, एंड बनानाज आर लाइक सो फन, एंड ऑनेस्टली लाइक नानी ना ऐसे होम रेमेडीज बनाती थी एंड दे वर ऑलवेज सुपर हेल्पफुल। इन दोनों में से वट एवर वर्क्स फॉर यू प्लीज लेट मी नो सो दैट आई कैन टेल नानी और नानी खुश हो जाएगी। एंड अगर आप भी ऐसे कोई हैक या ब्यूटी क्वेश्चंस पूछना चाहते हो नानी से, आई विल बी हैप्पी टू आस्क नानी टू हेल्प यू। फॉर दैट ऑल्सो यू विल हैव टू गेट इन टच विद मी। अनफॉर्चुनेटली मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE। सो हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड व्हाटएवर यू डू, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची एंड आई विल कैच यू ऑन द अदर साइड।

0: Mirchi Roshi. Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
1: Honest confession time. लोगों को यूजुअली माता आती है, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ मुझे पिता आते हैं, क्योंकि अब मैंने बिल्कुल अपने पापा की तरह बात करनी शुरू कर दी है. दिस इज ऑल्सो टूवर्ड्स द मैन आई मीट ऑन डेटिंग एप्स. ठीक है, अगर वो मुझे इरिटेट एएफ कर रहे होते हैं ना, आई जस्ट लुक एट देम एंड से ऐसी बातें मत कर यार, जितनी तेरी उम्र नहीं है उतना मेरा तजुर्बा है. एंड ही इज लाइक रियली, ऐसा तो नहीं लगता आपको देख के मैडम. एंड आई एम लाइक यार मैं पापा की तरह क्यों बातें कर रही हूँ. बट आई हैव रियलाइज दैट द ओल्डर आई एम गेटिंग द मोर आई एम बिहेविंग लाइक माई डैड. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग जस्ट बिटवीन यू एंड आई बड़े मजे आते हैं यार. मेरे डैड एक निहायत ही बदतमीज किस्म के इंसान हैं, और अब मैं जितनी ज़्यादा बदतमीजी से बात करती हूँ मैन सीम टू फाइंड इट इवन मोर अट्रैक्टिव. अगर आप एक आदमी हो तो मुझे ये बता दो कि आपको बदतमीज लड़कियाँ पसंद क्यों हैं, और अगर आप एक लड़की हो तो मुझे ये बता दो कि आपको माता आती है कि पिता आते हैं. ऑन दैट नोट यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड वाइल यू हिट मी अप कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: कुत्ते के चाटे हुए सैंडविचेस अपनी गर्लफ्रेंड को खिलाने वाले दरिंदे, अगर आप ऐसा कन्फेशन करना चाहते हो मेरे साथ, आई एम नॉट गोना स्टॉप यू बिकॉज टाइम हो गया है फॉर
3: द सीक्रेट बॉक्स,
2: व्हिच काइंड ऑफ मींस कि अगर आपके अंदर थोड़ी भी मतलब द डिजायर टू गेट रोशिफाइड है, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, आई बी हैप्पी टू डू इट फॉर यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग है RochIE. यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टा या FB. एंड मेरे साथ अभी लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो नॉटी गर्ल.
4: हेलो, हाय,
2: हाउ आर यू?
4: आई एम गुड.
2: झूठी, यू आर बेटर देन यू आर. वो सब छोड़ यार, कन्फेशन सुनने पहले.
4: Yeah, I really need to tell you.
2: Okay.
4: So my boyfriend and I, we just saw this weird position on the internet where I had to be on the ground, half on the ground and half on the bed, and he had to be behind me. We were like, this looks nice. We'll try it.
2: Okay.
4: Huh. Now the thing is, they did not teach us other aspects of that position. It just looked like that, and we didn't understand it either. So, like while we were doing it, it was good. But then we became too passionate, and I sort of fell. So when I fell, I bruised my back a little bit. But my boyfriend, he fractured his arm.
2: Oh, that's terrible.
4: Yeah. I know. And the thing is, we can't tell people what happened because how do we tell?
2: मुझे तो बड़े आराम से आपने बता दिया कि हमने कहीं पर एक नई पोजीशन देखी थी, फिर हमने ट्राई की और मैं गिर गई और वो गिर गया और मेरी पीट गई उसका हाथ. मुझे तो बड़े प्यार से बता दिया था आपने.
4: बट दैट्स
2: आई थिंक दैट्स आल्सो लाइक कूडोस टू मी ना, कि यू आर लाइक रेडियो पे तो है, मैं मिस्ट्री कॉलर हूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ एंड आई गेट अवे विद इट. And how did you break, bruise your back same day? कमरे में गए तो ठीक थे और कमरे से बाहर निकले तो ये ऐसे टूटे फूटे कैसे हैं?
4: Exactly.
2: तो तुम बोला कि तुम सीढ़ियों से गिर गए थे? हाँ. बोला कि हम सीढ़ियों में किस कर रहे थे और सीढ़ियों में किस करते करते मेरा पैर फिसल गया, तो मैं आई लैंडेड ऑन माई आर्म, और या ही लैंडेड ऑन हिज आर्म, तो उसका बाजू टूट गया और मैं पीठ पे गिर गई थी.
4: दैट वी कैन डू.
2: मुझे इसके कितने पैसे मिलेंगे? You're like, मेरी हंसी लगी काफी है. It's okay. You can roshify me while you're at it, है ना?
4: हाँ, please roshify me.
2: Oh, you're roshify me. There you go.
0: You've been roshified.
2: बट बेब, आपकी कन्फेशन इतनी मस्त थी ना, और अगर आप ऐसी हर चीज में इतनी जल्दी करते हो कि मतलब कोई वो नहीं है, फॉरवर्ड नहीं है, सीधा ही इन टू द मैडनेस, तभी शायद आप गिरे होंगे. थोड़ा प्रेप टाइम देना चाहिए था ना.
4: We've learned now.
2: All the best to you. I hope कि अगली बार आपको मुझे फोन करके ये कन्फेशन बताने की जरूरत ना पड़े. और अगर मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही कोई कन्फेशन है, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. We will get talking. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochIE. So do whatever you have to do. लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।
1: हिट हिट हिट हिट गाना, हिट गाना, हिट गाना।
2: Radio Mirchi, New York. It's hot.

0: Richie Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: वो अमेजिंग फीलिंग जो आपको आती है ना, जब आप 6 महीने तक अपने क्रश को चेज कर रहे होते हो उसे ये कहने के लिए कि मेरे साथ कॉफ़ी पर चलेगी, और 6 महीने के बाद आपका क्रश फाइनली आपको कहता है कि हाँ ऑफकोर्स चल सकते हैं, काम के बाद वाई डोंट यू टेक मी आउट फॉर कॉफ़ी, उसके बाद मुझे घर ड्रॉप कर देना. हमारे ऑफिस में कुछ ऐसा ही हो रहा था. 6 महीने से देख रही थी अभिषेक को कोशिश करते हुए, इस बंदी पर लाइन मारते हुए कि कभी ना कभी तो उसके मुँह से निकलेगा कि यार क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पर चलेंगी, और कभी ना कभी शायद वो हाँ बोल देगी. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. तो मैंने अभिषेक को साइड पर लेकर गई एंड आई टोल्ड हिम कि यार अगर तू उसे कॉफ़ी पर लेकर जा रहा है ना, तो एक चीज़ पक्का करना, मेक श्योर कि अगर वो चाय पी रही है या कॉफ़ी पी रही है, दोनों की दोनों चीज़ें गर्म होनी चाहिए. ही सेड मैं समझा नहीं क्यों. एंड देन आई टोल्ड हिम कि रिसर्च के हिसाब से अगर आप किसी इंसान को एक गर्म बेवरेज पिलाते हो या कुछ गर्म खिलाते हो, उसकी साइकोलॉजी ये होती है कि वो आपके सिस्टम को वार्म कर देता है, एंड योर चांसेस ऑफ अप्रिशिएटिंग द अदर पर्सन एंड योर चांसेस ऑफ सेइंग येस एज अपोज टू नो बढ़ जाते हैं. यानी कि अगर तू उसे गर्म कॉफ़ी पिलाएगा और उसके बाद उसे कहेगा दैट आई काइंड ऑफ रियली लाइक यू, डोंट यू थिंक हमें थोड़ा सा टाइम इकट्ठे स्पेंड कर लेना चाहिए, चांसेस हैं कि वो हाँ बोल देगी. वो इतना खुश हो गया दैट ही टोल्ड मी, रोशी मैं पूरे मेन्यू में जो कोल्ड वाले बेवरेजेस हैं ना, वो मेन्यू का पेज ही आगे कर दूंगा, वो सिर्फ देखेगी हॉट बेवरेजेस. एंड आई वाज लाइक यार स्मार्ट तो तू बहुत है और प्यार तो इसे बहुत करता है. आई जस्ट होप योर डेट गोज ऑफ वेल एंड माई फिंगर्स आर क्रॉस्ड फॉर अभिषेक. लेकिन अगर आप भी अपनी डेट को लेकर जा रहे हो बाहर फॉर द फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम, मेक श्योर दैट यू आर फीलिंग देम समथिंग गर्म, बिकॉज उसके फायदे बहुत सारे हैं. एंड वंस इट वर्क्स फॉर यू, मुझे थैंक यू बोलना मत भूलना इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एंड यू नो व्हाट आई ऑलवेज से, जिसके पास लव है उसके पास सब है. एंड आई लव यू लोड्स.

गाना बजा दूं।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: हिट गाना सुनना आसान है, ये समझना मुश्किल है कि वो हिट आखिर क्यों हुआ। और वही तो हम करते हैं हर हफ्ते के वो 20 गाने जो सबकी जुबान पर है, लेकिन मैं सिर्फ उनका काउंटडाउन नहीं करता, मैं उनके पीछे की कहानी ढूंढता हूँ। किस आवाज ने गाने को पहचान दी, किस कैरेक्टर ने उसे यादगार बना दिया, और कैसे एक गाना फिल्म से निकलकर हमारी जिंदगी में उतर गया। Hey, this is the Mirchi Top 20. मैं हूं सुरेन, गाने आपके, कहानियां मेरी, and we kickstart the countdown with गाना नंबर 20, ऊंचा।

0: फुल ऑन मसाला, फुल ऑन मैडनेस, चाहे 2007 हो या 2026। लेकिन बॉलीवुड पिछले 10-15 साल में एक अजीब फेज से गुजरा है। कभी स्केल, कभी VFX, कभी स्पेक्टिकल, जैसे फिल्म को यादगार बनाने के लिए सब कुछ बड़ा होना जरूरी था। लेकिन अब शायद फिल्म मेकर्स को समझ आ रहा है, फिल्म बड़ी नहीं, कहानी और कैरेक्टर्स अनफॉरगेटेबल होने चाहिए। रणवीर का एनिमल, रणवीर का धुरंधर, और फिर एक ऐसे एक्टर जिनके कैरेक्टर्स ने ये काम सालों पहले ही कर दिया था। द नेम इज अजय देवगन, चाहे वो ओमकारा बने।
1: अरे दम दम दम दम दम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओमकारा रे, ओमकारा।
0: या फिर बाजीराव सिंघम। दीज आर अजय देवगन्स टू मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स। लेकिन मेरे लिए पर्सनली विजय साळगांवकर ने इन दोनों को पीछे छोड़ दिया। दृश्यम ने दिखा दिया कि ऑडियंस को सीट से बांधे रखने के लिए VFX, एक्सप्लोजन्स इनकी जरूरत नहीं है। एक आदमी, एक सीक्रेट और एक किलर कैट एंड माउस गेम ही काफी है। और आयरनी देखिए, दृश्यम की फिल्में अपने म्यूजिक के लिए कभी याद नहीं की गई। And before I get to Drishyam, ये बता दूं कि नंबर 19 पर अजय सर का एक और अवतार हमने देखा था इन धमाल 4। उसका गाना साड़ी happens to be गाना नंबर 19। लेकिन गाना नंबर 18, well, Drishyam की दुनिया, वहीं से पहला गाना निकल कर आ रहा है। This is Vingansa, सिद्धार्थ बसरूर की आवाज में, रवि बसरूर का म्यूजिक, आमिल खान के शब्द, from Drishyam, the conclusion।
2: Number 18.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 12.

0: तमन्ना भाटिया,
1: we have a problem. And पहले ये बात क्लियर कर देता हूँ, मुझे तमन्ना भाटिया के डांस नंबर से कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन फैक्ट मुझे ये गाना स्त्री का बहुत ज्यादा पसंद है.
2: आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए.
1: And then Bads of Bollywood में ये वाला गाना तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था. इसके अलावा भी there quite a few dance numbers. एक और याद आ रहा है यार, Raid 2 में गाना आया था नशा करके. And तमन्ना इन गानों में कमाल करती है. There is no doubt about that. In fact, अगर आप Bollywood के best dance numbers की बात करोगे तो तमन्ना का नाम definitely top 3 spots में होगा. Problem गानों से नहीं है, problem image से है. क्योंकि तमन्ना signed up for this upcoming film called One along with सिद्धार्थ मल्होत्रा, जहां पे तमन्ना का एक proper acting role है. लेकिन उसका एक गाना आया है कॉल्ड थुमक थुमक, एंड वहां पर भी तमन्ना भाटिया इज डूइंग द सेम थिंग्स दैट शी डिड इन दी सॉन्ग्स दैट आई जस्ट मेंशन्ड. वही ग्लैमर, वही अदाएं, वही सेंसुअलिटी, वही स्क्रीन पर्सोना. देखो, अगर तमन्ना सच में चाहती थी कि ऑडियंस उनको एक पर्टिकुलर इमेज में ना देखे, तो फिर उनको उस इमेज से जुड़ी कई चीजों को पीछे छोड़ देना चाहिए था. एंड लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, इमेज इंडस्ट्री बनाती है, लेकिन उस इमेज को तोड़ने का फैसला एक एक्टर को करना पड़ता है. आप एक फिल्म में कैरेक्टर बनकर आओ और अगले ही मिनट ऑडियंस को वही पुरानी तमन्ना दिखा दो जिसे वो डांस नंबर्स में देखने की आदत डाल चुके हैं, तो फिर ऑडियंस कंफ्यूज नहीं होगी. वो बस वही देखेगी जो आप उसे बार बार दिखाते आए हैं. और यही बॉलीवुड का सबसे बड़ा ट्रैप है. पहले वो आपकी एक इमेज बनाता है, फिर उस इमेज को वो हिट बनाता है, और जब आप उसे तोड़ने की कोशिश करते हो तो वही इमेज आपको वापस खींच लेती है. लेकिन कुछ इमेजेस ऐसी भी होती हैं जिनसे एक्टर को नहीं पूरी जेनरेशन को कम्पीट करना पड़ता है. श्रीराम की छवि भी उन्हीं में से एक है. पिछले हफ्ते जिस भक्ति की प्रार्थना ने हमें पहली बार दर्शन दिए थे, इस हफ्ते वो नंबर 11 पर है. ये है जय जय राम, राम रामायण.
3: नंबर 11.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ये आवारापन, अरिजीत की आवाज अभी भी उस पुराने आवारापन का दर्द जिंदा रखती है। लेकिन जिस बॉलीवुड में सूरज बरजातिया ने 1989 में एंट्री ली थी यार, वो बॉलीवुड तो आज बिल्कुल अलग है। कैन यू बिलीव इट, 37 साल हो गए हैं लेकिन सिर्फ 10 फिल्म्स डायरेक्ट की हैं सूरज जी ने। फिर भी सूरज जी ने एक ऐसी दुनिया बना दी जो आज के बॉलीवुड में ऑलमोस्ट एलियन लगती है। यहाँ फैमिली में लोग एक दूसरे को तू तड़ाक करके बात नहीं करते, एक दूसरे को आप कहते हैं, बड़े बुजुर्गों के पैर छूते हैं, घर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, लेकिन कोई विलन नहीं होता। अपनी खुशी से पहले फैमिली की खुशी आती है और बदला लेने से ज्यादा सैक्रिफाइस की वैल्यू होती है। सूरज बरजातिया ने इंडिया को आइडियलाइज नहीं किया, उन्होंने एक आइडियल इंडिया इन्वेंट किया। और सवाल यह है, इतना बदल चुके बॉलीवुड में क्या इस दुनिया के लिए अभी भी जगह है? इसका जवाब हमें मिला सूरज बरजातिया से।
1: Somewhere I feel complete now. Even after so many years, people come here like this to see my cinema. My daughter is there, my son-in-law is there with the family, my sons are there, their in-laws are there, I have two granddaughters at home. So somewhere up, main kuch dena chahta hoon. Honestly, this is one of the most progressive films of mine, keeping my values intact. And director wohi hota hai jo kuch kehna chahta hai. So I just want to convey in this film how the generations can stay together. Of course, main kahin phansta hoon har film mein because main goodness mein aur goodness karna chahta hoon. To wo mere apne issues hai, but this is one of my most progressive and favorite films.
0: Generations को साथ रखना और अपनी values को compromise किए बिना उन्हें आज के cinema में लेकर आना, शायद सूरज जी की सबसे progressive बात यही है कि उन्होंने वक्त के साथ अपनी values बदलने से इनकार कर दिया और अब इसी दुनिया में melody लेकर आ रहे हैं Bollywood के ultimate hit machine, the man who collaborated with सूरज बरजातिया on प्रेम रतन धन पायो, हिमेश रेशमिया। नंबर 9 पर डेब्यू हो रहा है ऑफ द टाइटल सॉन्ग ये प्रेम मोल लिया, संग बाय निहाल टोरो एंड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया श्रेया घोषाल। नंबर 9।

गहरा हुआ सुनते ही वो बर्फीली पहाड़ियां, रणवीर सिंह, सारा अर्जुन एक बाइक पे बैठे हुए, वो सारे विजुअल जहन में आ जाते हैं। और शायद ग्रेट फिल्म सॉन्ग्स की एक खूबसूरत क्वालिटी यही होती है कि आवाज, गाना और चेहरा एक ही याद बन जाती है। लेकिन बॉलीवुड में कुछ गाने ऐसे भी हैं जहां गाना याद रह गया लेकिन चेहरा बिल्कुल नहीं याद आता। और कभी कभी इसका रीजन सिंपल है, कास्टिंग इज ऑल रॉन्ग, गलत है।

ये गाना I'm sure कि आपकी प्लेलिस्ट में आज भी मौजूद है। इस गाने का नाम है मौला मेरे मौला फ्रॉम द फिल्म अनवर और इसे बनाया था मिथुन ने। गाना आज भी जिंदा है, लेकिन ऑनेस्टली एक सवाल का जवाब बताओ, क्या आपको इसके हीरो याद है? नहीं ना? लेट मी टेल यू द नेक्स्ट सॉन्ग।

0: अरे खूबसूरत गाना साइबो फ्रॉम शोर इन द सिटी, एंड ये गाना कितने लोगों को याद है, लेकिन फिल्म कितने लोगों को याद है? फेसेस तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ऑडियंस कभी कभी गाने को एक्टर से आजाद कर देती है, लेकिन इसका ऑपोजिट भी होता है जब कास्टिंग इतनी परफेक्ट होती है कि गाना सुनते ही एक्टर की आंखों में वही इमोशन दिखने लगता है जो सिंगर की आवाज में हम सुनते हैं। शायद इसलिए आज का जो नंबर वन गाना है वो नंबर वन पे है, क्योंकि जब जब आपके कानों में तेरा मेरा रिश्ता नाम की आवाज गूंजेगी, इमरान हाशमी का चेहरा आपकी नजरों के सामने होगा, पूरे हार्ट ब्रेक के साथ, उस दर्द के साथ। बिल्कुल उसी इंसान के लिए बना हुआ ये गाना। इट इज नंबर वन वंस अगेन अनडिस्प्यूटेड ऑन द मिर्ची टॉप 20। तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज
1: नंबर वन।

0: हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत किसी रिश्ते को बनाता है वक्त। अनफॉर्चुनेटली मेरा वक्त इस शो पे अभी खत्म हो गया है, एंड दैट ब्रिंग्स अ क्लोज टू दिस एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉप 20। ये वादा है कि मैं आपको फिर मिलूंगा यहीं ऑन द मिर्ची टॉप 20, 20 गानों के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ। अंटिल देन, सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

टीडीएलजे ले लो, मोहब्बतें ले लो, रब ने बना दी जोड़ी ले लो, ये तीनों और भी कई सारी हिट हिट फिल्में, धूम ले लो, वॉर टू ले लो, ऑल ऑफ देम, ये सब बनाने वाले थे आदि चोपड़ा यानी आदित्य चोपड़ा। लेकिन आदित्य चोपड़ा ने ये फिल्म मेकिंग जो थी ये सीखी कौन सी फिल्म से, कौन सी फिल्म के साथ उन्होंने सेट पे पहली बार कदम रखा था, आज उसी फिल्म को लेकर के आई हूँ। यश चोपड़ा साहब बना रहे थे चांदनी, ओ मेरी चांदनी। Well, इस फिल्म के डायरेक्शन के लिए उन्होंने अपने बेटे को असिस्टेंट डायरेक्टर यानी आदि चोपड़ा को असिस्टेंट डायरेक्टर रखा था और बस इसी फिल्म की बारीकियों को सीख करके आदित्य चोपड़ा ने आगे आने वाली सारी फिल्में बनाई। चांदनी के नाम बहुत सारे किस्से हैं, सब पता करके लाई हूँ, एक एक करके शेयर करूंगी। अभी जल्दी किस बात की है, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे सुनो होता है क्या। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जींस।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

यश चोपड़ा साहब ने तो अपनी चांदनी रेखा जी में देखी थी, पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ। एंड आज जिस फिल्म की बातें हो रही हैं वो है रंग भरे बादल में तेरे नैनों के काजल में मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी। सो यश चोपड़ा साहब ने जब ये फिल्म बनाई ना, वो चाहते थे कि चांदनी के रोल में उमराव जान, मेरा मतलब है कि रेखा जी आए। एंड ऑल्सो बिकॉज चांदनी नाम काफ़ी फेमस हो चुका था लोगों के बीच में। पूछो क्यों? क्योंकि इस फिल्म से पहले यश चोपड़ा साहब ने बनाई थी सिलसिला, और सिलसिला में चांदनी बनी थी रेखा जी, यानी कि उनका नाम, उनके कैरेक्टर का नाम चांदनी था। लेकिन रेखा जी ने ना अनएक्सपेक्टेडली, यश साहब को कोई मना नहीं करता था, उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया। क्यों किया? इंटरेस्टिंग स्टोरी, अभी बताऊंगी आपको। गाने सुनकर के वापस आओ। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

क्योंकि रेखा नहीं चाहती थी कि चांदनी की कोई भी याद उनके पास अब रह जाए। पुरानी जींस पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट श्रीदेवी वाली चांदनी। अब हुआ ये कि यश चोपड़ा साहब चाहते थे कि रेखा जी उनकी फिल्म की चांदनी बने, और ऐसा इसलिए भी बिकॉज सिलसिला जब उन्होंने बनाई थी ना, जो कि चांदनी से पहले थी, उसमें रेखा जी ने चांदनी का कैरेक्टर प्ले किया था। एंड जब यश साहब उनके पास ये रोल का ऑफर लेकर के गए, he never expected कि रेखा जी इस इतने मीठी रोल से, इतने खूबसूरत रोल से मना कर देंगे, क्योंकि इस रोल में बहुत सारे शेड्स थे। रेखा जी ने पता है क्यों मना किया? शी सेड कि मुझे ना, जब मैंने सिलसिला करी तो बहुत ही मेरी फीलिंग्स के साथ बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि टॉर्चर हुआ, और वो काफ़ी ड्रेनिंग था मुझे सिलसिला को फिर से रिपीट नहीं करना। एंड दैट्स व्हाई शी डिनाइड कि सिलसिला से रिलेटेड अगर एक कैरेक्टर का नाम भी चांदनी रिपीट हो रहा है तो उस यादों में नहीं जाना चाहती थी। ऑलराइट, फिर श्रीदेवी कैसे आई बताऊंगी आपको। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जींस।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मीनाक्षी शेषाद्री, माधुरी दीक्षित, सारी उस टाइम की बड़ी एक्ट्रेसेस ने ये रोल करने से मना कर दिया। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, चांदनी फिल्म की बात हो रही। कौन सा रोल मना कर दिया? देविका का रोल। देविका विनोद खन्ना की वाइफ दिखाई जाती है, जो कुछ देर के लिए आती है, एक आध गाने में आती है, एंड दैट्स इट। वेल ऑफकोर्स उस टाइम की सारी एक्ट्रेसेस को लगा कि इतना बड़ा रोल, इतना मीटी रोल जो है चांदनी का, वो तो श्रीदेवी को जा रहा है। अब श्रीदेवी के सामने हम में से कौन टिकेगा? इसलिए मोस्ट ऑफ देम डिनाइड डूइंग द रोल। फिर आई जूही चावला। जूही चावला एकदम फ्रेश फेस थी उस समय, एंड शी वॉज ट्राइंग टू गेट इन टू यू नो बिग फिल्म, शी वॉज ट्राइंग टू वर्क विद बिग डायरेक्टर्स। तो जैसे ही यश साहब ने ये न्यू कमर जूही चावला को रिक्वेस्ट किया, वो फौरन मान गई, एंड दिस वर्कड आउट इन हर फेवर। क्योंकि इसके बाद एक अच्छा सा मेकओवर दे करके यश साहब ने लॉन्च की अपनी जूही चावला को इन द फिल्म डॉर। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ज्योमेट्रिक प्रिंस इन्होंने सिलसिला में भी पहने पुरानी जीन्स पे। हाय मैं हूँ श्रेया और आज ना उस जमाने की हीरोइंस के लाए हुए फैशन स्टेटमेंट्स जो हम आज तक इस जमाने में फॉलो करते हैं ना वो ढूंढ करके लाई हूँ मैं। सो रेखा जी ना ज्योमेट्रिक प्रिंट्स पहनती थी और जंप सूट्स जो आजकल हमें बहुत पसंद है एक्चुअली में सबसे पहले रेखा जी ने पहने थे। खूबसूरत फिल्म ले लो, सिलसिला ले लो एंड सो मैनी ऑफ देम भाई। शी वॉज नोन फॉर हर बोल्ड लुक्स और फिर उनकी रेड चटक लिपस्टिक। ओहो हो वैसे रेखा जी की बिंदी भी ना बहुत पॉपुलर हुई थी, वो ब्लैक वाली भी और रेड वाली भी जो उन्होंने सिलसिला में लगाई है। आज ना ऐसी वो सारी हीरोइंस के फैशन स्टेटमेंट्स जो कि पूरे इंडिया में रेज बन गए थे, हर लड़की फॉलो कर रही थी, हर लड़की जो कॉलेज गोअर थी, हर लड़की जो हॉस्टल में रहती थी, हर लड़की वेल आज पुरानी जीन्स पे अगला किसका बताऊंगी। हाउ अबाउट जीना तमान? तो वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

गोविंदा ने इस रोल से मना किया और उसके बाद अनिल कपूर ने इस रोल से मना किया, और दोनों का रीजन पता है क्या था? उनको व्हील चेयर पे नहीं बैठना था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड यश चोपड़ा साहब को अपने रोहित को तो व्हील चेयर पे बैठाना ही था। वेल फाइनली उस रोल को हाँ करी थी ऋषि कपूर ने। पुरानी जीन्स पे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म चांदनी, इसी फिल्म के गाने भी हो रहे हैं। तो यश चोपड़ा साहब ने सबसे पहले अनिल कपूर को ये रोल ऑफर किया था ऑपोजिट श्रीदेवी, ही सेड नो। उसके बाद उन्होंने ऑफर किया था ये रोल गोविंदा जी को, ही ऑल्सो सेड नो। मतलब दोनों लोगों को लगता था कि भाई डांस वाला हीरा है जिसमें एक्शन चल रहा है हीरो का, ये वो हीरा है जहां फिल्में बन रही हैं जिसमें डांस हो रहा है हीरो का, ऐसे में मेन लीड अगर व्हीलचेयर पे बैठ जाएगा तो क्या होगा। लेकिन यश साहब को पता था कि उनको अपने हीरो को सिंपथी दिलवानी है ऑडियंस से और उसके रैश बिहेवियर को जस्टिफाई करना है। फाइनली इस रोल को ऋषि कपूर ने ऑफकोर्स हामी भरी एंड देन वी ऑल नो इट वॉज अ सुपर डुपर हिट फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
3: हिट गाना।

0: only on Radio Mercy, New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

चांदनी जैसी रोमांटिक फिल्म ना उस दौर में आई थी जब उस समय सिर्फ और सिर्फ एक्शन फिल्मों का बोलबाला था। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ और एक्शन फिल्में ही लोग देखने जाते थे बॉक्स ऑफिस पे। नाउ चांदनी कहते हैं कि वो उस रोमांटिक जॉनर को ना फिर से वापस लेकर के आया। लेकिन आपको पता है यश चोपड़ा साहब को ये आइडिया आया कहाँ से? मैं बताती हूँ। कहते हैं कि यश चोपड़ा साहब पुणे से लेकर के बॉम्बे तक एक गाड़ी में बैठ के जा रहे थे किसी काम से, एंड ही सडनली नोटिस कि जितने भी बैनर्स, जितने भी पोस्टर्स लगे हैं बड़े बड़े फिल्मों के, वो सब एक्शन फिल्में हैं। एंड ही रियलाइज कि वेयर इज द रोमांस। दैट वाज द टाइम जब उनको लगा कि ओहो, ये वो टाइम है जब मुझे वापस इंडिया को, बॉलीवुड को ना रोमांस देना चाहिए। और उन्होंने चांदनी बना दी, एंड व्हाट अ सुपर डुपर हिट फिल्म। वेल, आज इसी फिल्म की बातें, इस फिल्म के गाने श्रेया के साथ, तो बस मिर्ची सुन रहे हो और सुनते रहो।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आजादी हो।
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो
1: दादा।
0: सुनो तो
1: दादा।

0: मुस्कुराइए,
1: हाँ पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए,
0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
2: विनोद खन्ना की इस आदत से बहुत परेशान हो गए थे यश चोपड़ा। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर हिट फिल्म चांदनी। अब क्या हुआ कि विनोद खन्ना हमेशा सेट पे बहुत लेट आते थे। यश चोपड़ा यूज्ड टू बी ऑलवेज पंक्चुअल, ऑलवेज ऑन टाइम एंड रेस्ट ऑफ द क्रू एज वेल। श्रीदेवी तो उस समय नई नई स्टार थी। सो विनोद खन्ना के लेट आने के चक्कर में यश चोपड़ा साहब को इतना खराब लगा, इतना गुस्सा आया दैट इट इवेंचुअली लेड टू चेंजिंग द स्क्रिप्ट। अगर आप चांदनी देखो तो होता क्या है कि पहले स्क्रिप्ट में सोचा गया था स्टोरी लाइन में कि फर्स्ट हाफ विल बी डेडिकेटेड टू ऋषि कपूर एंड आफ्टर ही मीट्स द एक्सीडेंट उसके बाद इंटरमिशन के बाद विनोद खन्ना पे फिल्म जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो इसलिए क्योंकि विनोद खन्ना के सीन्स लेने में ही ना आधे से ज्यादा दिन निकल जाता था और आधा दिन उनका वेट करने में। तो यश चोपड़ा साहब ने ना एकदम स्क्रिप्ट ही बदल दी। उन्होंने विनोद खन्ना को एक्चुअली में बस एक गेस्ट अपीयरेंस की तरह थोड़े बहुत सीन्स दिए। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ चांदनी के गाने आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

पुरानी जींस पे आपो श्रेया के साथ, और आज चांदनी फिल्म की बातें हो रही हैं, इस फिल्म के गाने हो रहे हैं, और जो अगला गाना है वो मुझे लगता है कि हर ब्राइड अपने संगीत में कभी ना कभी जरूर गाती है और इस पे परफॉर्म करती है। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, इसमें पहला संदेशा पता नहीं किसका आया, दूसरा संदेशा, तीसरा संदेशा, इट इज सच अ वेडिंग सॉन्ग। एंड यू नो ये गाना किसने गाया है? यू विल बी शॉक्ड टू नो, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो। वेल ये गाना पैमेला चोपड़ा जी ने गाया है, यानी यश चोपड़ा की वाइफ। तो ये गाना आज हो जाए।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

व्हाइट चूड़ीदार, व्हाइट कुर्ता एंड लहरिए वाला दुपट्टा, पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। और कहते हैं चांदनी चौक के जितने भी स्टोर्स थे, जितनी भी शॉप्स थी, उन पे ना ये कॉस्ट्यूम कम पड़ गई थी, हजारों लड़कियां बस यही खरीद के जा रही थी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म चांदनी। सो भाई, इस फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर पहले थी भानु अथैया जी, यस द रिनाउंड भानु अथैया जी। व्हाट हैपेंड वाज कि उनके कुछ क्लैश हुआ यश चोपड़ा जी के साथ एंड शी लेफ्ट द फिल्म। उसके बाद इन केम लीना दारू एंड लीना दारू ने भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस को यू नो ड्रेस किया था, बट फॉर हर चांदनी जैसा यश जी ने डिस्क्राइब किया था ना, उनके लिए उन्होंने बस एक व्हाइट कुर्ता, व्हाइट चूड़ीदार एंड लहरिए वाला दुपट्टा चूज किया एंड इट बिकेम आइकॉनिक। मेरी मॉम भी बताती हैं कि मतलब हर कोई वही कॉस्ट्यूम, हर लड़की वही कॉस्ट्यूम पहनना चाहती थी और पहनी भी। आप सोचो हजारों स्टॉक आता था चांदनी चौक में, ये आज तक की भी स्टोरी है। और व्हाइट चूड़ीदार और व्हाइट कुर्ता खत्म कुछ ही दिनों में। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म का गाना, विच इज संग बाय सुरेश वाडकर। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
2: सावन का महीना पवन करे शोर,

0: रे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

गोविंदा ने इस रोल से मना किया और उसके बाद अनिल कपूर ने इस रोल से मना किया, और दोनों का रीजन पता क्या था? उनको व्हील चेयर पे नहीं बैठना था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड यश चोपड़ा साहब को अपने रोहित को तो व्हील चेयर पे बैठाना ही था। वेल फाइनली उस रोल को हाँ करी थी ऋषि कपूर ने। पुरानी जीन्स पे वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म चांदनी, इसी फिल्म के गाने भी हो रहे हैं। तो यश चोपड़ा साहब ने सबसे पहले अनिल कपूर को ये रोल ऑफर किया था ऑपोजिट श्रीदेवी, ही सेड नो। उसके बाद उन्होंने ऑफर किया था ये रोल गोविंदा जी को, ही ऑल्सो सेड नो। मतलब दोनों लोगों को लगता था कि भाई डांस वाला ईरा है जिसमें एक्शन चल रहा है हीरो का, ये वो ईरा है जहां फिल्में बन रही हैं जिसमें डांस हो रहा है हीरो का, ऐसे में मेन लीड अगर व्हीलचेयर पे बैठ जाएगा तो क्या होगा। लेकिन यश साहब को पता था कि उनको अपने हीरो को सिंपथी दिलवानी है ऑडियंस से और उसके रैश बिहेवियर को जस्टिफाई करना है। फाइनली इस रोल को ऋषि कपूर ने ऑफ कोर्स हामी भरी एंड देन वी ऑल नो इट वाज अ सुपर डुपर हिट फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ कम राइट बैक।

0: कुछ कहता।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जींस श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, और ये तो वही टाइम होता है जब आराम से गाड़ी में बैठते हैं मैं और आप, गाड़ी के शीशे नीचे करते हैं और ठंडी हवा के झोंके में लेट्स हिट द हाईवे। आज का मेरा हाईवे हिट मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ उन लोगों को जो दिल पर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, जो जानते हैं कि उनका जो दिल पर है यानी जिससे वो प्यार करते हैं या फिर जो उनसे प्यार करता है, वो उनकी एक हाँ सुनना चाहता है लेकिन वो बस उन्हें टीज करके चले जाते हैं, कभी मुस्कुरा के कभी नाराज होके, लेकिन दिल की बात जुबां पे नहीं लाते। ये गाना आज उन्हीं लोगों के लिए। ऑन दैट नोट दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ, गुड नाइट। अगर आपको मुझसे वन टू वन ऐसे बात करनी है ना, या तो सिर्फ मैं बात करती हूँ, तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे एसएचआर श्रेया विद लव मेरा हैंडल है। गुड नाइट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट हिट हिट हिट गाना।

0: है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अपने वर्ड्स को सोच समझकर यूज करना क्यों जरूरी है, आइए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: शब्दों की एक बहुत सुंदर स्टोरी भी है कि एक भिखारी है और देख नहीं सकता है, और वो बैठा होता है स्ट्रीट के नजदीक पर, और एक कार्डबोर्ड पर लिखा होता है कि आई एम ब्लाइंड, आई कैन नॉट सी। लोग आते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ से गुजर जाते हैं, कोई ज्यादा कंट्रीब्यूट भी नहीं करता। फिर एक लेडी वहाँ पर आती है, वो कार्डबोर्ड को उठाती है और उसकी दूसरी साइड पर शब्दों को बदल देती है, और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन दिन भर के अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन आता है।
2: अच्छा।
3: और उसको बहुत सरप्राइज्ड होता है कि ऐसा क्या वो लिख करके गई कि अभी जो आ रहा है कुछ ना कुछ उसके कटोरे में रख करके जा रहा है। शाम को जब वो लेडी ऑफिस से वापस आ रही होती है, वापस वहाँ पर रुकती है, वो देख तो नहीं सकता पर वो उसको जैसे उसके शूज को टच करते पहचान जाता है। उसको पूछता आपने क्या लिखा, तो उसने कहा मैंने वही शब्द लिखे लेकिन भाषा अलग थी। और उसने लिखा था इट इज अ ब्यूटिफुल डे बट आई कैन नॉट सी, बहुत सुंदर दिन है लेकिन मैं देख नहीं सकता। दैट क्रिएटेड लॉट ऑफ कंपैशन इन पीपल। पहले वो फैक्ट था लेकिन फिर ये जो स्टेटमेंट थी उसने लोगों के अंदर रहम को पैदा किया। तो शब्दों में एनर्जी होती है, शब्दों में शक्ति होती है। हमें बहुत सोच समझ करके अपने शब्द यूज करने चाहिए क्योंकि ये तीर की तरह है, एक बार ये तीर निकल गया
2: वापस नहीं आता।
3: कहते हैं तलवार का जख्म तो फिर हील हो जाता है, शब्दों का नहीं होता।
2: क्या बात है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: बिना मांगे एडवाइस देने से क्यों बचना चाहिए, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: हम राय अपनी कैपेसिटी से देते हैं, हम में से कितने लोग राय उनके कैपेसिटी से देते हैं।
4: सही बात है।
3: इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है, जब तक कोई मांगे नहीं देना नहीं चाहिए, और अगर कोई मांगता है तो जरूर ये चीज ऐड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी।
4: सही, बहुत बहुत बढ़िया,
3: मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप देख लें। सेकंड चीज, हम में से बहुत लोग इसलिए अपसेट हो जाते हैं कि सामने वाले ने राय मांगी, मैंने दी, तो भी उन्होंने उस पर चला नहीं।
4: हाँ।
3: तो फिर मांगा ही क्यों था।
4: सही बात। हाँ।
3: वैल्यू नहीं है शायद मेरे राय की।
4: हाँ।
3: ऐसा नहीं होता।
4: हाँ।
3: वैल्यू नहीं होती तो वो आपके पास क्यों आते हैं।
4: हाँ।
3: अगर वो आपके पास आपसे पूछने के लिए आए हैं तो जरूर उनको आपके एक्सपीरियंस की, आपके राय की, एडवाइस की वैल्यू है।
4: हाँ।
3: लेकिन हो सकता है कि उनकी कैपेसिटी और इस समय उनके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है।
4: बहुत बढ़िया, समझना जरूरी है।
3: बहुत जरूरी है, इसलिए अपनी राय दे करके फिर न्यारा होना, डिटैच होना।
4: हाँ।
3: और उस व्यक्ति के प्रति गुड विशेस रखना।
4: हाँ।
3: कि आप जो भी चूज करें उसमें आपका कल्याण हो, ये जरूरी है।
4: वेरी नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है। अनिल गोयल जी लिखते हैं कि जब दुनिया नेगेटिविटी से भरी लगे तो अपनी पॉजिटिविटी कैसे बचाए।
3: एक्चुअली दुनिया इतनी नेगेटिविटी से भरी हुई नहीं है जितनी हमें वो पिरोसा जाता है।
2: हाँ,
3: ज्यादातर क्योंकि वो कंज्यूम क्यों करते हैं मुझे भी नहीं पता, पर जो चीज कंज्यूम होती है वो चीज ज्यादा से ज्यादा पिरोसी जाती है, सप्लाई की जाती है। तो फिर हमें अपनी कंपनी को चेंज करना पड़ेगा। हम अगर उन्हीं चीजों के साथ है जहाँ से हमें, चाहे वो न्यूज का प्लेटफॉर्म है या कुछ भी प्लेटफॉर्म है, वो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो चारों तरफ नेगेटिविटी है तो कई चीजें चेंज करें। पहला, कॉन्टेंट चेंज करें। कॉन्शियसली ऐसा कंटेंट को कंज्यूम करना शुरू करें जो आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। ऑर्डिनरी लोग बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो न्यूज नहीं बनती है।
2: बिल्कुल,
3: देयर इज सो मच ऑफ काइंडनेस हैपनिंग इन साइलेंस।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: लेकिन अगर वो चीज हम कंज्यूम करते हैं तो वो हमें बेटर व्यक्ति बनाती है। तो एक है कॉन्टेंट, दूसरा है कंपनी, किन लोगों के साथ हम रहते हैं। भले कम हो, भले एक दो हो, लेकिन वो ऐसे होने चाहिए जो गॉसिप नहीं करते हैं,
2: एम्पावर करते हैं।
3: हाँ, मतलब अच्छी बातें करते हैं, एम्पावर करते हैं। एक ये पता नहीं चलता है लेकिन गॉसिप बहुत बड़ा डिप्लीटर है, बहुत बड़ा डिप्लीटर है। आप औरों के बारे में गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत फैला रहे हैं, नेगेटिव एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, इट्स अ वेरी बिग डिप्लीटर। फिर दूसरा, कंप्लेन करते रहना, ब्लेम करते रहना। तो कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो एक दूसरे को इंस्पायर करे, आपकी छोटी छोटी चीजों को देख करके खुश हो, आपको आगे बढ़ाए, आपको आगे बढ़ता हुआ देख खुश हो। तो ये भी तो बहुत बड़ी चीज है ना, हैविंग दैट वन फ्रेंड। जब वो देखता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो वो इनसिक्योर नहीं है लेकिन आपकी सफलता को देख करके खुश होता है। तो कंपनी होगी, कंपेनियन हो गया, कॉन्टेंट हो गया, ये सारी चीजों का अगर हम ध्यान देते हैं, थोड़ा समय अपने साथ बिताए। क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी किसकी है? खुद की। तो वो जो इनर थॉट्स हैं वो भी तो बहुत नेगेटिव हो गए हैं ना। तो वो जो इनर कम्युनिकेशन, इनर कॉन्वर्सेशन है, उसको कॉन्शियसली पॉजिटिव करें तो इतनी बुरी दुनिया लगे कि नहीं, एक्चुअली वी डोंट सी द वर्ल्ड एज द वर्ल्ड इज, वी सी द वर्ल्ड एज वी आर। तो हमारा लेंस ज्यादा नेगेटिव हो गया है। दुनिया मुझे नहीं लगता है कि नेगेटिव है।
2: बहुत बढ़िया। और अनिल गोयल जी, मुझे महात्मा गांधी की बहुत कमाल कही हुई एक बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था, आई विल नॉट लेट एनी वन वॉक विद देयर डर्टी फीट थ्रू माई माइंड। तो जब आपको लगे कि दुनिया ऐसा कर रही है तो उनको करने मत दो, और जो सिस्टर श्रेया ने बोला, ये सारी चीजें ट्राई करिए, शायद आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए।
0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। सिस्टर पल्लवी सेन ने एक सवाल भेजा है, लिखती हैं कि लोगों पर ट्रस्ट करना और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना मुश्किल क्यों लगता है और इससे कैसे निकले।
2: मुश्किल ट्रस्ट करना नहीं है, मुश्किल अंदर में फियर है कि वो बिट्रे नहीं करे।
1: जी, शायद पास्ट में कुछ हुआ हो।
2: पास्ट में हुआ भी हो सकता है, नहीं भी हुआ हो सकता, तो भी आप इतना सब कुछ सुन लेते हैं ना।
1: हाँ।
2: इतना सुन लेते हैं, इतना देख लेते हैं, तो भी फियर क्रिएट हो जाता है कि ये मेरे साथ ऐसा ना करे।
1: जी।
2: ट्रस्ट एक कम्फर्टेबल फीलिंग है।
1: हाँ।
2: आप अगर किसी को ट्रस्ट करते हैं तो इस एक्सपेक्टेशन से ना करें कि वो बिट्रे ना करेंगे। एक्चुअली आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन जब हम कुछ करते हैं तो उसका बोझ दूसरे पर नहीं डालें, क्योंकि वो वैसे बिहेव करेंगे जैसे वो हैं। हर एक की जो पर्सनालिटी है वो वैसे ही रिस्पॉन्ड करता है, वैसे ही रिएक्ट करता है। अगर हमने चूज किया किसी को ट्रस्ट करना, वो हमारे लिए था क्योंकि हमें कंफर्टेबल था।
1: लेकिन इंसान जब ऑलरेडी परेशान हो चुका है, शायद उसको ट्रस्ट इश्यूज हैं, इसलिए पल्लवी जी लिख रहे हैं कि मेरे लिए मुश्किल होता है, तो दूसरों पर आप बोल रहे हैं कि भैया उनके भरोसे मत चलो, बट जब मैं ऑलरेडी बोलते ना दूध से जला छास भी फूक फूक के पीता है, तो ऐसे केस में क्या
2: करें? पिए ना ऐसे केस में ये करें, केयरफुल हो जाएं, वेरीफाई करें, एकदम से किसी को ट्रस्ट ना करें। पहले आप देख लें थोड़े समय की वो फ्रेंडशिप आपकी कैसी है। ये जरूरी है कि इस समय, जिस समय से हम गुजर रहे हैं, इसमें ये सब कुछ होता है। लोग धोखा भी देते हैं, बिट्रे भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, समय ऐसा है। तो आप अगर कहें कि नहीं मैंने तो 100% ट्रस्ट किया था, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपको प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ेगा कि ये सब हो सकता है, इसलिए आप ज्यादा केयरफुल हो जाएं। पर केयरफुल होना अच्छी बात है, पर ट्रस्ट करना ही छोड़ देना वो अच्छी बात नहीं है। हर एक को डाउट करते रहना, हर एक को डाउट के नजर से देखते रहना, वो आपको अनकंफर्टेबल फील कराएगा।
1: अब जब मैं इससे गुजर रहा हूँ ऑलरेडी, और ये बात मैं समझ गया कि भाई केयरफुल होना जरूरी है, लेकिन मिसट्रस्ट करना भी, हर आदमी को ट्रस्ट नहीं करना भी सही नहीं है, लेकिन अब मैं इससे गुजर रहा हूँ, तो क्या एक दो चीजें हैं जो शायद मैं कर सकता हूँ एज अ प्रैक्टिस कि भाई तुम ये करो, शायद आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप ट्रस्ट करने लगोगे लोगों को।
2: इसे थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होना पड़ता है कि ऐसा भी हो सकता है। और कुछ नहीं है एक्चुअली, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। कभी कोई कहेगा मैंने तो बहुत केयरफुल होकर के इसके साथ काम किया, बिजनेस किया, फिर भी इन्होंने मुझे चीट कर दिया, तो आप ट्रस्ट करते हैं। सेकंड नंबर है आप केयरफुल होते हैं, वेरीफाई करते हैं। फिर थर्ड नंबर है क्यों,

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: दूसरों की सुनिए लेकिन डिसीजन वही लीजिए जो आपको अंदर से सही लगे। आइए इस बैलेंस को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी शायद हम ट्रस्ट करना चाहते भी हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, जो शायद हमारे वेल विशर्स होते हैं, शुभ चिंतक बन के आते हैं शायद, वो हमें बोलते हैं नहीं नहीं तुम्हारे साथ पहले भी ऐसा हुआ, तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे साथ यही प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हो, तुम्हें पता नहीं दुनिया बहुत बुरी है, ये नहीं करो। तो जब हम कोशिश भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग हमें रोक रहे होते हैं, तो ऐसे केस में क्या करें?
4: देखो, लोग जितने होंगे हर एक का अपना ओपिनियन तो होगा ना
3: जी।
4: उनका ओपिनियन आप सुने लेकिन करें वो जो आपको कम्फर्टेबल है। आपको क्या कम्फर्टेबल है? जैसे आप मिसट्रस्ट की बात कर रहे हैं, पिछले दिनों भी मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी जो एक आर्मी मैन का था। वो बार बार अपने इंटरव्यू में कह रहे थे मैं किसी भी चीज को ट्रस्ट नहीं करता। हमें सिखाया ही जाता है कि किसी भी चीज को ट्रस्ट नहीं करना। हम हर एक को मिसट्रस्ट की नजर से देखते हैं। तो सामने वाले ने कहा फिर आप जीते कैसे हैं? कहते वही तो हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर करता है। इट इज नॉट कि उसमें जो उनकी छोटी सी बात थी, मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि भाई प्रेसिडेंट के आगे ग्लास भी रखा है, तो हम वो चीज भी ट्रस्ट नहीं करते।
3: सही बात है।
4: तो वो क्यों ट्रस्ट नहीं करते? क्योंकि हमें नहीं पता
3: कि उसमें क्या है,
4: मतलब किसका क्या इंटेंशन है। वी डोंट नो किसका क्या इंटेंशन है। अगर वो मिसट्रस्ट करते भी हैं तो फिर वो क्या करते हैं? वो उस ग्लास को 10 बार चेक करते हैं।
3: तो ट्रस्ट बट वेरीफाई।
4: एब्सोल्युटली। अब उनका अगर वो रोल है तो वो मिसट्रस्ट, व्हाट इज मिसट्रस्ट लीडिंग टू? प्रिपरेशन। अब इस चीज को समझे ना, अगर आप कुछ चीज को मिसट्रस्ट भी कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप बेटर प्रिपेयर्ड हैं, आपने उस चीज को चेक किया, फिर आपने डोर्स भी बंद कर दिए कि वो ग्लास अभी चेंज नहीं हो सकता है। सो कीवर्ड है प्रिपरेशन। अगर आप उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड होंगे तो आपको इतना उस चीज के प्रति एंजाइटी नहीं होगी। बाकी तो कोई भी आपको लिख करके गारंटी दे करके नहीं कह सकता है,
3: सही बात है,
4: कि आप ये करेंगे तो सामने वाला आपको बिट्रे कर ही नहीं सकता या धोखा दे ही नहीं सकता। हर एक का क्या इंटेंट है हमें नहीं पता। तो हम अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने को प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने को इवॉल्व कर सकते हैं, दुनिया को तो हर समय नहीं बदल सकते।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर नेत्रा जी का सवाल आया है, वो लिखते हैं कि अपने किसी करीबी को बीमारी के बाद बदलते हुए देखना बहुत पेनफुल होता है, ऐसे सिचुएशन में खुद को कैसे संभालें?
3: पहले तो ये समझना है कि लोग बदलते हैं, whether for good or bad, लेकिन वो बदलते हैं। और as a human being हमें ना change अच्छा नहीं लगता। हम कहीं में कह भी देते हैं कि आप बहुत बदल गए हैं, but कभी कभी circumstances, experiences, trauma व्यक्ति को बदल देते हैं। अब वो बदलना जो है वो अच्छे के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए भी हो सकता है। तो पहली चीज चाहिए एक्सेप्टेंस। फर्स्ट चीज है कि सामने वाला अगर बदल रहा है किसी भी ट्रॉमा के कारण, एक्सेप्टेंस फॉर द पर्सन, बदलाव के लिए नहीं। हो सकता है कि वो बदलाव उनके लिए भी अच्छा नहीं है,
2: सही बात।
3: लेकिन व्यक्ति के लिए एक्सेप्टेंस क्यों नहीं उसके अंदर, आप ऐसे क्यों बन गए, आप ऐसे क्यों हो गए, बीमारी से पहले तो आप ऐसे थे, अभी आप ऐसे हो गए, वो आप उस व्यक्ति को और ज्यादा रिजेक्ट कर रहे हैं। तो पहली चीज चाहिए कि उस बदलाव, जो बदला हुआ व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए कम्प्लीट एक्सेप्टेंस चाहिए।
2: सही बात है।
3: सेकेंड कम्पैशन।
2: हाँ।
3: अगर वो बदलाव अच्छे के लिए नहीं है, तो वो भी तो हर्ट कर रहा है।
2: हाँ।
3: वो व्यक्ति भी तो अंदर से दुखी है, चाहे उसको फियर ही है कि बीमारी दोबारा ना आ जाए।
2: हाँ।
3: चाहे वो बीमारी के बाद बहुत शांत हो गया है, इतना पहले जैसा उमंग में नहीं रहता।
2: हाँ।
3: तो कम्पैशन की वो भी हर्ट कर रहा है।
2: जी, बिल्कुल।
3: एंड थर्ड, लव।
2: हाँ।
3: कि आपका लव उनको एम्पावर कर सके।
2: क्या बात।
3: कि वो वापस अपने जो उनका पुराना वाला जो स्वरूप है, जो आपको लगता था बेटर है, उसमें वापस आ सके। सो एक्सेप्टेंस, कंपैशन एंड देन प्योर सेल्फलेस लव।
2: और नेत्रा जी, जब ये सिस्टर श्रेया ये कह रही थी एक्सेप्टेंस, प्योर लव एंड ऑफ कोर्स प्रोबेबली लॉट ऑफ पेशेंस, तो मुझे एक बहुत कमाल की किताब है, ट्यूजडेज विद मॉरी, मिच एल्बम ने लिखी है। तो आपको अगर ये किताब कहीं मिल जाए तो जरूर पढ़िए। तो इसमें ये सारी चीजें लिखी हैं, जब एक बहुत बड़ी बीमारी से कोई गुजर रहा होता है तो ये सारी चीजें ही काम आती हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है। ओम शांति, मेरा नाम साक्षी है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो जो गलतियां उसने जीवन में की हैं उनका पछतावा क्यों होता है, और कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि आत्मा अभी कुछ और दिनों तक शरीर के साथ रहनी चाहिए थी?
3: सी, जो हम स्पिरिचुअली समझते हैं, पश्चाताप तो कोई शरीर छोड़ने के बाद ही नहीं होता। पश्चाताप माना, हम लाइफ में भी तो कितना पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप क्या होता है कि आपने कुछ किया और बाद में आपको रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
2: लेकिन जीवन के आखिरी दिनों में शायद जब आत्मा शरीर छोड़ने वाली होती है तो उस समय शायद बहुत लोग बोलते हैं कि काश मैंने नहीं किया होता, शायद उनका उस तरफ,
3: क्योंकि साथ में क्या जाता है?
2: कुछ नहीं।
3: मे बी उस समय नहीं, कुछ नहीं क्या, साथ में यही जाता है ना, कर्मों का हिसाब किताब। आपको क्यों पश्चाताप हो रहा होता है? क्योंकि आपने बहुत सारी उन चीजों को इम्पोर्टेंस दी होती है जो चीजें साथ में जाने वाली नहीं होती, और उसके लिए आपने अपने वैल्यूज के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज किया होता है। सी, कर्म इज नॉट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, ऐसा नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट है। आप समझे ना, एक लॉ है, जैसे ग्रेविटी का लॉ होता है, आपने कुछ ऊपर फेंका तो वो नीचे आता है। तो कर्म का भी लॉ क्या कहता है? कॉज एंड इफेक्ट। जो आपने किया है उसका एक इफेक्ट है। अब हमने करते समय तो कई बार हम जस्टिफाई कर देते हैं, ये करना जरूरी था, झूठ बोलना जरूरी था, गुस्सा करना जरूरी था, उस समय पर कर दिया। अब जब उसका इफेक्ट आ रहा है, इफेक्ट, मेंटल सफरिंग भी तो एक इफेक्ट होता है ना। आप पश्चाताप कर रहे हैं, गिल्ट कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं सब कुछ जीवन में ठीक है, पता नहीं फिर भी क्यों इतनी उदासी है, खुशी क्यों नहीं अनुभव होती है। मेंटल सफरिंग बहुत बड़ा एक कार्मिक रिटर्न है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको अच्छा ही नहीं लगता, आपको जीवन जीने की दिल ही नहीं होती, तो फिर उस समय कई बार पश्चाताप होता है। लेकिन पश्चाताप की जगह रियलाइजेशन ज्यादा अच्छी है। रियलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपने रियलाइज किया कि ये ठीक नहीं था, आगे नहीं करें, बस और क्या।
2: इसमें आप आगे नहीं करें बोलना चाहती है, क्योंकि she's talking about somebody who's, or she's talking about herself.
3: Yeah, अगर आप
2: she's about to pass on.
3: अगर before also, see what is soul going to take, अगर आपने उस चीज को realize भी किया ना, तो वो स्मृति भी आपके साथ जाती है।
2: अरे वाह, क्या बात। जब आपने रियलाइज किया तभी
3: सोल अपने साथ संस्कार और हिसाब किताब लेकर जाएगी। तो अगर आपने उस चीज को रियलाइज भी किया तो आपके संस्कार में वो चीज चली जाती है कि ये गलत है। तो इवन अगर आपका कॉस्ट्यूम चेंज होगा तो वो स्मृति आपको एक बार जरूर हिट करेगी कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देन अगेन इट इज अ डिसीजन कि करना है कि नहीं करना, फिर उससे एक नया कॉन्सिक्वेंस क्रिएट होगा, लेकिन आपके पास एक चॉइस जरूर होगी।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है, लिखते हैं कि नमस्ते सिस्टर श्रेया, मैंने हाल ही में आपको सुनना शुरू किया है और आपकी बातें मुझे सच में बहुत इंस्पायरिंग लगती हैं। मैं अपने पास्ट को लेकर स्ट्रगल कर रही हूं। जिस इंसान पर मैंने 4 साल ट्रस्ट किया, उसने बिना किसी एक्सप्लेनेशन के रिलेशनशिप खत्म करके मुझे घोस्ट कर दिया। 4 महीने हो गए हैं, मैंने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश भी की लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुझे पता है कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती, फिर भी एक सवाल बार बार मुझे डिस्टर्ब करता है कि कोई बिना कुछ कहे सब कुछ कैसे छोड़ सकता है। जब सामने से क्लोजर ना मिले तो खुद को कैसे हील करें और कैसे मूव ऑन करें?
3: उसको एक खूबसूरत मोड़ समझ करके भूल जाए। See, the time that you have spent with that person was very good. Closure बाहर से नहीं मिलता, closure खुद को देना पड़ता है। ठीक है, आपके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ, आप चाहेंगे ये चीज का आंसर आपको मिले कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, लेकिन हम चाह रहे हैं पर वो नहीं बात करना चाह रहे या वो नहीं इस चीज को आंसर कर रहे हैं, तो कितना उसके अंदर और इन्वेस्ट करेंगे, कितना और अंदर ही अंदर अपने साथ नेगेटिव कॉन्वर्सेशन करेंगे। फिर कभी कभी हमारा अपने से फेथ भी खत्म होना शुरू हो जाता है
2: कि मुझे में कुछ कमी होगी।
3: हाँ, मुझ में कोई कमी होगी, मेरे में कोई प्रॉब्लम होगी। देन वी कीप इमेजिनिंग थिंग्स, वी कीप अज्यूमिंग थिंग्स, वी कीप, और वो हमें वीक करता है ना। हमने कोई रिलेशनशिप में अपना 100% दिया, इंजॉय किया, बहुत कुछ उससे सीखा, ट्राई भी किया उसको वर्कआउट करने के लिए। आई विल नेवर से कि छोड़ दे। अगर किसी भी रिश्ते के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए वो जब तक बन सके, क्योंकि रिश्ता क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। दो जने होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट अगर होते हैं तो संस्कारों की थोड़ी रास करनी पड़ती है। कभी किसी को झुकना पड़ता है, कभी किसी को थोड़ा सहन करना पड़ता है, कभी किसी को लेट गो करना पड़ता है, तो ही वो रिश्ता आगे बढ़ता है। हर समय आप समझे मैं ही राइट हूँ तो भी वो रिश्ता नहीं बनता है। तो रिश्ते के अंदर एक एफर्ट होता है, आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर आपने सब कुछ कर लिया और वो व्यक्ति क्लियरली कहता है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, देन आई डोंट थिंक इट इज फेयर ऑन यू। क्या वो चीज को सोच करके दुख में जाए, उसका जख्म क्रिएट करें, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाए? इट इज हार्मिंग यू, आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपका वर्क, आपका एनवायरमेंट। इसलिए लेट गो, क्लोजर अपने को दे। बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, शायद अब शायद इससे भी कोई और अच्छा मिलेगा। मे बी आई डिजर्व समबडी बेटर। वैसे भी अगर कोई ऐसे आपको बिल्कुल छोड़ करके चला गया,
2: उसके भरोसे
3: आप रियलाइज भी कर रहे हैं कि आप उसके साथ जीवन भर तो बिता नहीं सकते हैं, सो देन गिव दैट क्लोजर टू योरसेल्फ। अच्छा ही हो गया, किसी परमानेंट रिलेशनशिप में जाते, मैरिज आदि होती, इससे पहले मुझे इस व्यक्ति के बारे में पता चल गया। ग्रेटिट्यूड फील करे। किसी व्यक्ति की अगर कोई नेगेटिविटी पहले सामने आ जाती है और आप बच जाते हैं, तो ये भी जैसे आपका कोई अच्छा पुण्य कर्म है।
2: आई थिंक उन्होंने क्लोजर ले लिया जब उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। क्लोजर आपको
3: मिल नहीं, क्लोजर तब तक नहीं मिलता है जब तक हम उस दर्द से बाहर नहीं आते
2: या सामने वाला मुझे जवाब नहीं दे,
3: जो भी कारण है। लेकिन दर्द तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना, अभी वो जो भी जवाब देंगे, लेकिन दर्द तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने उसको पकड़ा हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं होल्ड ऑन कर रहा हूँ, आई एम नॉट लेटिंग गो। क्लोजर उस दिन होगा व्हेन आई से आई लेट गो, दे वर ब्यूटीफुल 4 इयर्स
2: एंड आई मूव ऑन।
3: बहुत सुंदर थे, फिर ये सीन हुई, बहुत अच्छी नहीं थी, बट नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। शायद इससे अच्छा कोई सीन लाइफ में आना बाकी है, इससे अच्छा व्यक्ति आना बाकी है, और अब वो चीज अंदर पेन क्रिएट नहीं कर रही है, वो अंदर दुख नहीं दे रही है, यू आर कम्फर्टेबल, आपने एक्सेप्ट कर लिया है, दैट इज क्लोजर। आप दर्द में है तब तक वो क्लोजर नहीं है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: अडल्टिंग में सबसे डेंजरस गेम होता है जब हम सुबह उठते ही कहते यार बस 5 मिनट और, एंड देन बूम, यू आर लेट, योर कॉफी इज कोल्ड एंड योर फोन हैज 47 न्यू व्हाट्सएप मैसेजेस। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और मिर्ची मॉर्निंग्स ऑफिशियली शुरू हो चुका है। वेदर यूर ड्राइविंग टू वर्क, प्रिटेंडिंग टू वर्क, ड्रॉपिंग द किड्स ऑफ टू स्कूल, या फिर स्टैंडिंग इन योर किचन वंडरिंग व्हाई यू ओपन द फ्रिज फॉर द फोर्थ टाइम, आई हैव गॉट यू। और मैं तुम्हारे साथ रहने वाले अगले कुछ घंटों तक, और आज का प्लान काफी सिंपल है। वी आर गोइंग टू लिसन टू सम अमेजिंग बैंगर म्यूजिक, थोड़ी सी गॉसिप करेंगे, अच्छा थोड़ी ज्यादा कर लेंगे, और फिर काफी सारी देसी बातें करेंगे। और ये सब इनफ नहीं है तो बीच बीच में तुम्हें अराउंड द वर्ल्ड से खबरें भी सुनाती रहूंगी। सो बगल अब ग्रैब दैट कॉफी, चाय, ब्रेकफास्ट, जो कुछ भी कर रहे हो, एंड लेट्स मेक दिस मॉर्निंग अ लॉट मोर मिर्चीदार। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में। टॉक टू मी इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पे मैसेज करो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ एंड वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स। चलो रिवाइंड करके पता करते हैं कि क्या हुआ था आज के दिन। 331 BC में अलेक्जेंडर द ग्रेट डिफीटेड पर्शियन किंग डेरियस द थर्ड एट द बैटल ऑफ गाउगमेला। फिर 1903 में बेसबॉल का फर्स्ट मॉडर्न प्रोफेशनल वर्ल्ड सीरीज गेम हुआ, बॉस्टन अमेरिकन्स वर्सेस पिट्सबर्ग पायरेट्स। 1908 में हेनरी फोर्ड इंट्रोड्यूस्ड द मॉडल टी अराउंड $825 to $850 में एंड सडनली कार्स बिकेम एक्सेसिबल टू द मासेस। 1949 में माओ ज़ेडोंग प्रोक्लेम्ड द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन बीजिंग्स टियानमेन स्क्वायर। 1960 में नाइजीरिया बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड 1971 में वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड ओपन्ड नियर ऑरलैंडो, बिकॉज अपेरेंटली हिस्ट्री के बीच में एक जायंट कासल भी तो जरूरी होता है। एंड दैट्स योर हिस्ट्री रिवाइंड मिर्ची स्टाइल विद मी प्रिसिला। Talk to me, Mirchi Pris is my handle name, Instagram or X per and WhatsApp per. Mera number hai 9033 Mirchi, that's 9033 64 7244. Stay tuned and stay home.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड आवर। सबसे पहले दुबई से टेल अवीव जाने वाली फ्लाइट में एक एक्सट्रीमली सीरियस कॉकपिट इंसिडेंट के बाद यूएई ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक को पायलट ने कैप्टन स्मिथ मचार को अलेजेडली स्टैब किया और फ्लाइट को सऊदी अरेबिया डाइवर्ट करके सेफली लैंड कराया गया। इन्वेस्टिगेटर्स आर नाउ लुकिंग इनटू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड एंड द मोटिव। नंबर टू पर इसी से रिलेटेड, मचार इज बीइंग प्रेज्ड फॉर हिज एक्शंस। रिपोर्ट्स से द मुंबई बॉर्न कैप्टन डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड हेल्प्ड passengers and crew regain control of the situation. Indian Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump have publicly praised his courage. And lastly, Cristiano Ronaldo has left Portugal's national team camp. CR7 announced that he decided to leave after a conversation with the Portuguese Football Federation president and said he would reveal the reasons in due course. This follows reports of tension involving coach Jorge Jesus. The federation confirmed Ronaldo's departure but did not give further details. And that's Mirchi Hour ka 3. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein. Connect karo mujhse Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris and WhatsApp ka number hai 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Pepe Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. La vieva la murga.
1: Mirci, murga. Hello.
2: Mr. Kumar.
1: Yeah.
2: Hello, sir. How are you?
1: Fine.
2: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
1: नहीं, आप बता
2: दो। हाँ, तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
1: रिगार्डिंग
2: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
1: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
2: सैटरडे चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
1: हाँ
2: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दीजिए मेरे को।
1: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
2: सैटरडे 4 बजे सर, वो 4:30 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर। सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
1: हाँ मिलते हैं।
2: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे। सर कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
1: देखो यार, मैं मंडे ट्यूसडे मैं मुंबई जा रहा हूँ। ट्यूसडे आप एक काम करो, मिल लो मुझे।
2: मैं ट्यूसडे किसी कितने बजे सर, ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
1: 7 बजे
2: सर, मंगलवार को 7 बजे। मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
1: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
2: सर संडे कितने बजे?
1: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे।
2: सर संडे 3 बजे दिन में सर, मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
1: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर बताइए मुझे।
2: मैं पहले अपने ही निकाल
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my Desi people. Priscilla here, and let's get you caught up with Team India ka full sports dhamaka.
2: Mirchi, watch it. Mirchi, watch it.
1: सबसे पहले एशियन गेम्स 2026 की बात करते हैं। इंडिया इज करंटली सिटिंग एट नंबर 8 ऑन द मेडल टेबल विद 62 मेडल्स, 10 गोल्ड्स, 22 सिल्वर एंड 30 ब्रॉन्ज। लास्ट एशियन गेम्स में हांगजू में इंडिया फिनिश फोर्थ विद अ रिकॉर्ड 107 मेडल्स। सो अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, तो मेडल टैली जो है वो थोड़ा सा और बढ़ने वाला है। एंड हॉकी में प्रॉपर इंडिया पाकिस्तान मिर्च मसाला लगा हुआ है। इंडिया बीट पाकिस्तान 4-3 इन अ थ्रिलर विद अभिषेक स्कोरिंग द विनर जस्ट 45 seconds before the final whistle. This sends India into their 12th Asian men's hockey final, and they are now guaranteed at least a silver. Aur cricket mein bhi picture kafi blockbuster hai. India thrashed Sri Lanka for 124 runs, bowling them out for just 45, and now India versus Pakistan for Asian Games cricket gold on October 3rd. अरे यार, सैटरडे का कैलेंडर अभी से ब्लॉक करना पड़ेगा। बट एक बिटर स्वीट अपडेट है, इंडियन टेनिस एंड्स द गेम्स विदाउट अ मेडल फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1986 आफ्टर सुमित नागल्स क्वार्टर फाइनल एग्जिट। एंड क्रिकेट फैंस होल्ड योर चाय, यस्टरडे इंडिया चेज्ड अ मैसिव 406 अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। शुभमन गिल स्मैश एन अनबीटन 223 रन्स, रोहित शर्मा हिट 101 रन्स, एंड हिस्ट्री वॉज मेड बिकॉज 5 बैटर्स स्कोर्ड सेंचुरीज इन 1 ओडीआई फॉर द फर्स्ट टाइम ever in क्रिकेट हिस्ट्री। बेसिकली गुवाहाटी में क्रिकेट नहीं हो रहा था, बल्कि बैटिंग का महासंग्राम चल रहा था। मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में, एंड फॉर मोर सच स्पोर्ट्स अपडेट्स सुनते रहो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर, और फॉलो भी कर लो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड मिर्ची पर. आप बर्थडे बैश का टाइम आ चुका है. सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू ऑल द बर्थडे बेबीज हू आर सेलिब्रेटिंग टुडे. इट्स 1st October, नया नया महीना शुरू हुआ है एंड आज की बर्थडे गेस्ट लिस्ट जो है ना, इट्स गिविंग फुल बॉलीवुड टू हॉलीवुड क्रॉस ओवर. सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू अनुष्का रंजन, विनीत श्रीनिवासन, जोया हुसैन एंड एक्टर महेश ठाकुर, ऑल सेलिब्रेटिंग टुडे. एंड म्यूजिक लवर्स, दिस डेट ऑल्सो बिलोंग्स टू द लेजेंडरी कंपोजर एस डी बर्मन, जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी. द मैन बिहाइंड हिंदी सिनेमाज मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेलोडीज. एक तो मैं थोड़ी देर में तुम्हें सुनाने ही वाली हूँ. हॉलीवुड में भी आज बर्थडे स्क्वाड इज स्ट्रॉन्ग. जूली एंड्रूज, द ओरिजिनल मैरी पॉपिंस एंड साउंड ऑफ म्यूजिक आइकॉन ब्री लार्सन, एके कैप्टन मार्वल एंड कमेडियन एंड वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स ज़ैक गैलेफिनाकिस, बिकॉज अपेरेंटली अक्टूबर 1st बेबीज कम विद लोड्स एंड लोड्स ऑफ टैलेंट एंड अ लिटिल बिट ऑफ क्रेजी. एंड ऑल्सो टुडे वी हैव फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जिनका आज हैप्पी बर्थडे होता है. एंड ऑल्सो सेलिब्रेटिंग टुडे इज जमैकन डांस हॉल स्टार शेंसिया. सो वेदर यू वेकिंग अप राइट नाउ या फिर कहीं और पर पार्टी कर रहे हो कल रात से, हैप्पी बर्थडे टू यू. ढेर सारा केक खाओ, कैलोरीज को भूल जाओ और मिर्ची सुनते जाओ. मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो जी, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और आप पता करते हैं गोल्ड का क्या हालचाल चल रहा है।
2: RajJewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,370. आज गोल्ड के प्राइजेस $4,370 पर ट्राउंस के साथ अपवर्ड ट्रेंड पर हैं। गणेश चतुर्थी, पुष्य नक्षत्र, धनतेरस, दिवाली, डांडिया सब हमारे साथ सेलिब्रेशन के लिए तैयार हैं और गोल्ड के प्राइसेस ऑलरेडी अपर ट्रेंड ले रहे हैं। इससे पहले गोल्ड और ऊपर जाए, 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड। आइए राज ज्वेल्स के साथ 0% इंटरेस्ट पे, 0 डाउन पेमेंट के साथ गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए 9 मंथ की फाइनेंसिंग में ज्वेलरी घर लेके जाए और RajJewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
1: गोल्ड रेट अपडेट सुना तुमने एक्सक्लूसिवली मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। कमिंग अप मिर्ची दैट बैंगर्स फॉर यू, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Milciu.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virtua la burka. Milci, burka.
2: हेलो
3: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रीप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए। ठीक है, आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
2: बीप। अरे बोल कौन रहा है?
4: अरे बोल कौन रहा है
3: सर, ये वाला भेज दें बीप।
2: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
4: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
3: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेज दें सर बीप।
2: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
4: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
3: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेजना सर, ये वाला बीप।
2: अरे बावले हो गए हो क्या?
4: अरे बावले हो गए हो क्या?
3: सर एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, ये और करोगे बीप।
2: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
4: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
3: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं लास्ट।
2: ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
4: अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
3: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
2: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
4: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
3: सर ये वाला ठीक है बीप।
2: अबे पागल ले ले, तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
4: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
3: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
2: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
4: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
3: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
2: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले तेरे में बुद्धि कम है।
4: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
3: सेंट सर, ये वाला गया सेंट। ठीक है सर।
2: अरे भाई किसको भेज दिया?
3: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
2: अबे ओ पागल मारे, ये क्या कर रही है? मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, stop scrolling and start listening. मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में और अब मेरे पास में है राशि जोन का पहला पार्ट.
2: Mirchi राशि जोन.
1: It is यानी मेष राशि. आज का दिन काफी बेनिफिशियल है. स्टैंडिंग हेल्थ कंसर्न्स में रिलीफ मिल सकता है, बट बजट में थोड़ा सा ब्रेक लगाओ यार. पैसा है तो जरूरी नहीं है कि हर चीज एड टू कार्ट करते जाओ. लकी कलर इज कोरल रेड. लकी नंबर इज 14. टॉरस यानी कि वृषभ राशि. रिलैक्स फील करोगे आज. प्रेज और गेन्स भी आ सकते हैं, बस क्लाउडी जजमेंट से बचना. स्पेशली अल्कोहल अवॉइड करो. आज डिसीजन सोबर लेना लेकिन वाइब्स हाई रखना. लकी कलर इज सेज ग्रीन. लकी नंबर इज 6. जेमिनी यानी मिथुन राशि. क्रिएटिविटी इज ऑन ब्रो. मून भी तुम्हारी साइन में है, सो आइडियाज फुल स्पीड पर तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, बट रीसेंट इमोशनल हर्ट्स को फेस करने के लिए करेज चाहिए. और स्पेंडिंग कंट्रोल उदय कंट्रोल. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू. लकी नंबर इज 23. कैंसर यानी कर्क राशि. फाइनेंसेस स्टेडी है, रिलेशनशिप सॉफ्ट एंड स्वीट है, लेकिन हेल्थ को इग्नोर मत करो यार. एंड रिस्की डील्स से थोड़ा सा डिस्टेंस रखो. हर अपॉर्चुनिटी गोल्डन नहीं होती है, कुछ सिर्फ ग्लिटर भी होता है यार. लकी कलर इज पर्ल. लकी नंबर इज 11. लियो यानी कि सिंह राशि. आज योर पोलाइट साइड इज बेसिकली विनिंग अवार्ड्स. वर्बल पैसे मिलेंगे और वर्क प्लेस स्ट्रेस भी ईज हो जाएगा, बिकॉज योर वर्क इज शाइनिंग. बस ईगो को थोड़ा सा कॉफी ब्रेक पर भेज देना. लकी कलर इज सनफ्लावर येलो. लकी नंबर इज 19. वर्गो यानी कन्या राशि. लक इज हेल्पिंग यू एट वर्क विथ मनी और इमोशनली भी माइंड पॉजिटिव वाइब्स रिसीव कर रहा है. लव होप ऑल दैट गुड स्टफ. मतलब कि यूनिवर्स कह रहा है थोड़ा सा स्माइल तो बनता है बॉस. लकी कलर इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 28. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और अभी तक तुमने अपनी राशि नहीं सुनी है तो रिलैक्स, अगले बार में तुम्हारी राशि लिस्टेड होगी. तब तक के लिए तुम सुनो ये मिर्चीदार बैंगर्स और जाकर मुझे फॉलो करो. मैं हूँ मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244. और अभी के लिए बैंगर्स का टाइम है. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हे देयर, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। चलो बता करते हैं आज राशि जोन पार्ट टू में क्या चल रहा है।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लिब्रा यानी कि तुला राशि, आज फोकस शुड बी ऑन यू, पर्सनल गोल्स, थिंग्स दैट जेन्युइनली मेक यू हैप्पी और फैमिली गाइडेंस, परफेक्ट कॉम्बो। थोड़ा सा सेल्फिश होना अलाउड है आज के दिन, हेल्दी वाला लेकिन। ओके, लकी कलर इज रोज पिंक, लकी नंबर इज 32। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, म्यूचुअल हार्मनी और मैरिटल हैप्पीनेस का वाइब जो है ना काफी स्ट्रॉन्ग है आज। बस खुद को अननेसेसरली क्रिटिसाइज मत करो, मिरर को मिरर ही रहने दो, एचआर डिपार्टमेंट मत बनाओ। लकी कलर फॉर यू इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 9। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, सीनियर्स का वर्क प्लेस प्रेशर और घर में थोड़ा सा डिस्कॉर्ड थोड़ा स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है, लेकिन डीप ब्रेथ लो। हर प्रॉब्लम का आंसर रेजिग्नेशन और भाग जाना नहीं होता है। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 17। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आज खुद को मोटिवेट करो, ऑप्टिमिज्म रखो यार, कॉन्फिडेंस और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों इंप्रूव होंगे, मतलब कि यूनिवर्स कह रहा है यू हैव गॉट दिस बेब, अब बस तुमको ही मानना है। लकी कलर इज मिडनाइट ब्लू, लकी नंबर इज 35। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, मेडिटेशन एंड योगा कैन ब्रिंग पॉजिटिव फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी। 5 मिनट्स भी चलेगा यार, बस स्टार्ट तो करो तुम। इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करना योगा नहीं होता बेटा। लकी कलर इज मिंट, लकी नंबर इज 4। पाइसीज यानी कि मीन राशि, ओवरऑल वेलबींग का ध्यान रखो, स्पेशली बिकॉज डोमेस्टिक एंड फैमिली मैटर्स में शिफ्ट अनएक्सपेक्टेडली आ सकता है। घर का ग्रुप चैट एक्टिव हो सकता है, मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ। लकी कलर इज सी ग्रीन, लकी नंबर इज 21। एंड दैट्स योर राशि जोन फॉर टुडे। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, कीपिंग योर मॉर्निंग्स मिर्चीदार। अगर मेरा बोलना तुम्हें पसंद आ रहा है तो फॉलो मी इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647224। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और जानने का टाइम आ चुका है बिल्कुल नजदीक। वेल, मिर्ची मॉर्निंग्स इज रैपिंग अप। जाते जाते तुम्हें एक बॉलीवुड से सो कॉल्ड कर्ज टाइटल के बारे में बताती हूँ, जिसका नाम है कर्ज। या कर्ज कर्स्ड था, बिकॉज ओवर फोर डेकेड्स 9 फिल्म्स कैरियिंग द नेम कर्ज KARZ हैव रिपोर्टेडली फ्लॉप्ड। द ओजी वाज सुभाष घई'स 1980 क्लासिक कर्ज स्टारिंग ऋषि कपूर जी, एंड द फिल्म डिडंट वर्क इनिशियली एंड रिपोर्टेडली लेफ्ट ऋषि कपूर डीपली डिसअपॉइंटेड। देन केम हिमेश रेशमिया'स कर्ज विद 4 Z's। यस, apparently 1Z wasn't enough warning for him, and that film failure was reportedly followed by serious financial trouble for its makers. And then there is Urmila Matondkar, who wasn't seen in a major film for some time after Kurz with 4 Z's. The last film with Kurz in the title came out about a decade ago. So Bollywood producers, if you're thinking of reviewing the franchise, bas bhai naam change kar lo aur aisi films mat banao jinke naam mein Kurz ho, kyunki wo tumhe Kurz kar रहा है। एंड दैट्स वेयर मैं यहाँ से क्रूज करने वाली हूँ, होपफुली। वाओ, तो जाते जाते तुम्हें ये तो याद दिला दूँ कि तुमने मुझे फॉलो नहीं किया अभी तक। क्या कर रहे हो यार, आर यू माई फ्रेंड और नॉट? फॉलो करो जल्दी से जाके मुझे इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर भी नोट कर लो, 9033647244। एंड अभी के लिए यू हैव अ ग्रेट डे। टाटा बाय बाय फ्रॉम मी, बोले तो प्रिसिला। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये दोनों एक्टर्स ना ऑलरेडी साउथ में बहुत बड़े स्टार्स थे, लेकिन उन्हें लगता था कि शायद हिंदी इंडस्ट्री में वो इतना बड़ा मार्क नहीं बना पाएंगे। पुरानी जीन्स में हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया। और आज मैं जिस फिल्म की बात कर रही हूँ ना, वो फिल्म मैं एक्चुअली मैं देखना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि उस फिल्म को देखने के बाद ना, वो कहते हैं हैंगओवर होता है, एक्चुअली मैं इस फिल्म को देखने के बाद ना मेरा मूड ऑफ होता है। तो जब भी ये फिल्म बहुत सारे यू नो चैनल्स पे आती रहती है, आई ट्राई नॉट टू वॉच दिस मास्टरपीस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट सदमा। कमल हसन और श्रीदेवी जी ऑलरेडी साउथ के बहुत बड़े एक्टर्स थे, लेकिन हिंदी फिल्म में दोनों ने एक साथ पहली बार इसी फिल्म से काम किया था। आज इसी फिल्म की बातें होंगी श्रेया के साथ, एंड ऑफ कोर्स सदमा के बहुत खूबसूरत गाने। तो बस कहीं भी मत जाना, कम बैक राइट हियर ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मिस्टर कुमार।
3: या
4: हेलो सर, हाउ आर यू?
3: फाइन फाइन फाइन।
4: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
3: नहीं, आप बता।
4: तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
3: रिगार्डिंग व्हाट?
4: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
3: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
4: सैटरडे चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊँ?
3: हाँ
4: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दिए मेरे को?
3: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
4: सैटरडे 4 बजे सर, वो 4:30 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर। सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
3: हाँ मिलते हैं।
4: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे। सर कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
3: देखो यार मैं मंडे ट्यूसडे मैं मुंबई जा रहा हूँ। ट्यूसडे आप एक काम करो मिल लो मुझे।
4: मैं ट्यूसडे किसे कितने बजे सर? ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
3: 7 बजे
4: सर। मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
3: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
4: सर संडे कितने बजे?
3: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे।
4: सर संडे 3 बजे दिन में सर? मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो।
3: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले फिर बताइए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

गुलशन ग्रोवर तो फिल्म की सिर्फ शूटिंग देखने गए थे, उन्हें क्या पता था कि उन्हें इस फिल्म का इतना इम्पोर्टेंट रोल भी मिल जाएगा। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आज बात हो रही है फिल्म सदमा की, एक ऐसी फिल्म जिसका क्लाइमैक्स देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एक ऐसी फिल्म जिसको मैं ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है मैं देख नहीं पाती हूँ। मतलब मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स देख करके ना मेरा मूड एटलीस्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज खराब रहेगा। हाँ जी, सो सदमा में गुलशन ग्रोवर विलन का रोल करते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनको कभी इस रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया था, ये तो बाय एक्सीडेंट था कि उनको ये रोल मिल गया। अब हुआ ये कि अनिल कपूर ऑलरेडी एक कन्नड़ मूवी के लिए शूटिंग कर रहे होते हैं और सदमा की शूटिंग ना वहीं कहीं उनके ही सेट के आसपास होती है, तो अनिल कपूर श्रीदेवी से मिलने चले गए थे वहां पर। जब वहां गए तो भाई फिल्म के जो कैमरामैन थे जिनका नाम था बालू महेंद्र, उन्होंने गुलशन ग्रोवर को देख करके अनिल कपूर से कहा कि अपने दोस्त से पूछो क्या वो इस फिल्म में विलेन का रोल करेगा। और सोचिए, अनिल कपूर ने जैसे ही पूछा, गुलशन ग्रोवर तो उस समय उनके पास खास काम नहीं था, उन्होंने झट से हाँ कह दी एंड दैट वॉज हाउ ही लैंडेड इन द रोल। पुरानी जीन्स पे सदमा के गाने होंगे और सदमा की बातें विद मी श्रेया, कम बैक राइट हियर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

यही फिल्म कमल हसन और श्रीदेवी जी ने पहले तमिल में की थी। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ। सो ओरिजिनली दिस फिल्म वाज मेड इन तमिल, उसके बाद इसको हिंदी वर्जन में बनाया गया, टेकिंग अगेन द सेम एक्टर्स श्रीदेवी एंड कमल हसन। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा। लेकिन आपको पता है, हिंदी वर्जन बनाते समय श्रीदेवी काफी नाराज थी, और वो भी खुद से। उनको लगा कि तमिल वर्जन में ना वो और कमल हासन बहुत सारे सीन्स को इम्प्रूव कर पा रहे थे बिकॉज दे अंडरस्टूड द लैंग्वेज, लेकिन हिंदी क्योंकि श्रीदेवी की मदर टंग नहीं थी, उनको बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रही थी। तो श्रीदेवी सेट के हम बहुत सारे सीन्स को ना इम्प्रोवाइज नहीं कर पाए, जैसे डायरेक्टर बोलते गए हम बस वही करते गए। लेकिन अगर जैसा डायरेक्टर ने कहा सिर्फ उतना किया तो भी क्या खूबसूरत किया। सदमा रिमेन्स वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स ऑफ श्रीदेवी जी। मतलब इस फिल्म के बाद ना, अगर आप जब ये फिल्म देख लोगे तो आपको लगेगा कि श्रीदेवी कितनी मंझी हुई कलाकार थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, इस फिल्म की बातें और गाने चलते रहेंगे। सो डोंट यू गो एनीवेयर, कम बैक राइट हियर।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

द डर्टी पिक्चर विद्या बालन की याद है आपको? ये किस पे बनी थी? साउथ की सेंसेशनल एक्ट्रेस विद्या बालन पे। अब ये साउथ की एक्ट्रेस यानी सिल्क स्मिता उस टाइम पे एक्सट्रीमली पॉपुलर थी और क्राउड भर भर के जाता था सिनेमा हॉल में इनकी फिल्में देखने के लिए। तो भाई जब हिंदी फिल्म बना रहे थे डायरेक्टर बालू महेंद्र, तो उनको लगा कि उन्हें अब सिल्क स्मिता को ना हिंदी फिल्मों वालों से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, हिंदी फिल्म ऑडियंस को भी दिखाना चाहिए। तो ही वांटेड टू शो समथिंग सेंसेशनल बिटवीन द यू नो स्टोरी ऑफ कमल हासन एंड श्रीदेवी जी। सो उन्होंने ना साउथ की इंडस्ट्री की ये फैसिनेटिंग यंग गर्ल सिल्क स्मिता को लेकर के आए। सो इनका तमिल वर्जन वाली जो फिल्म थी उसमें तो बहुत ही अच्छा काम किया, और उसके बाद हिंदी फिल्म में जब वो लेकर के आए, दैट वाज हर इंट्रोडक्शन, सिल्क स्मिता का इंट्रोडक्शन टू हिंदी ऑडियंस। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, वापस सब।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: लाल कपड़ों वाली मेम साहब।
1: हाँ, मैं।
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।
1: अच्छा।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? Yes, 1, 2, 3, 4. La la la la la la la. बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया. Musicians, आप लोग मत बजाइए. Ready? 1, 2, 3, 4.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vjet bala burka. Milci, burka.
1: Hello.
2: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रीप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए। ठीक है, आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
1: अरे बोल कौन रहा है
2: सर, ये वाला भेज दें बीप।
1: अरे भाई रॉन्ग नंबर है
2: ये भेज दें सर बीप।
1: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
3: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
2: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेजना सर, ये वाला बीप।
1: अरे बावले हो गए हो क्या
2: सर, एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, या और करोगे बीप।
1: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
2: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं लास्ट।
1: ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
3: अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
2: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
1: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
3: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
2: सर ये वाला ठीक है बीप।
1: अबे पागल, ले तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
3: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
2: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
1: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
3: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
2: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
1: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले तेरे में बुद्धि कम है।
3: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
2: सेंट सर, ये वाला गया सेंट। ठीक है सर।
1: अरे भाई किसको भेज दिया?
2: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
1: अबे ओ पागल ये क्या कर दिया, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ये पागल
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जींस, श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और जब बात हो फिल्म सदमा की तो ना एक जगह चुप हो जाना चाहिए क्योंकि गाना ये आ रहा है। एंड इस गाने से, यानी इस फिल्म के गानों से इलैयाराजा जी ने अपना डेब्यू किया था, और उनके असिस्टेंट पता है कौन थे? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इट वाज नन अदर देन एआर रहमान साहब। इतना खूबसूरत गाना ये सुदास जी ने गाया। कमिंग ओवर राइट नेक्स्ट, सुरमई अखियों। ये गाना जो है श्रीदेवी को देख करके कमल हसन गाते हैं, और श्रीदेवी के चेहरे पर इतना इनोसेंस, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ये गाना शुरुआत से इन्जॉय करो। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: बालू महेंद्र ने जब इस फिल्म का क्लाइमैक्स लिखा था तो उन्होंने बहुत सिंपल सा लिखा था कि कमल हासन श्रीदेवी को बस देख रहे हैं, ऐसी आंखों से देख रहे हैं, ऐसे इमोशंस के साथ देख रहे हैं कि बस अब तो मत जाना। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म सदमा, जिसका क्लाइमैक्स ओ गॉड रोंगटे खड़े कर देता है। और इसीलिए ना जब भी ये फिल्म आती है किसी भी चैनल पे तो मैं देख नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि इसका क्लाइमैक्स ना मुझे 2-3 दिन तक मेरे दिल में एकदम जगह करके रहेगा एंड यू नो आई विल फील वेरी वेरी सैड। सो बालू महेंद्र ने तो कोशिश की थी कि बस कमल हासन सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहे हैं श्रीदेवी को, उनकी आंखों में है कि तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाओ, और श्रीदेवी चलती जा रही है। लेकिन इट वॉज कमल हासन हु सेड कि नहीं, ऑडियंसेस के लिए ये सिर्फ एक ग्लिम्स, एक एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ और होना चाहिए। एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन कमल हासन सेड कि मैं इस रोल, इस पूरे सीन को ना इम्प्रोवाइज करना चाहता हूँ। तो जो वो ट्रेन में बैठी हैं श्रीदेवी और कमल हासन उनको उछल उछल के दिखा रहे हैं कि ये शैतानियाँ हम लोग करते थे, ये मस्ती हम लोग करते थे, और श्रीदेवी उनको यू नो कुछ खाने को देती हैं कि अरे भाई लगता है यू नो ही इज़ लॉस्ट हिज माइंड, इसको कुछ खाने को दे दें, ये सब कमल हासन ने सोचा था। और ये ऐसा सीन निकला जिसकी वजह से ये फिल्म आज तक जानी जाती है। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, बस कहीं भी मत जाना।
1: ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, ये माना मेरी जान मोहब्बत।

फिर से वो टाइम आ गया जब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बिकॉज अगला गाना इज़ अ कल्ट सॉन्ग। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ सदमा की बात हो रही है, तो वो गाना ना हो जो जब भी हम थोड़ा सा डगमगाते हैं या ज़िंदगी से नाराज़ होते हैं, निराश होते हैं, तो ये गाना सबसे पहले जहन में आता है। सुरेश वाडकर की आवाज़ है, इलिया राजा की कॉम्पोजिशन है और गुलजार साहब ने लिखा था ये। यही गाना तमिल में, यानी जब ये फिल्म तमिल में बनी थी ओरिजिनली, तो ये तमिल की फिल्म थी जिसको हिंदी में फिर से बनाया गया था। यही गाना था पुंगात्रू पुथी नाथू, कुछ ऐसे करके, मैं ठीक से शायद प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ये वाला, ए जिंदगी गले लगा ले। कौन लिख सकता था ये गुलजार साहब के अलावा, कि हमने भी तेरे हर गम को गले से लगाया। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಜೋಡಗನೆ.

श्रीदेवी की सारी फिल्मों में से सबसे बेहतरीन मानी जाती है सदमा फॉर हर एक्टिंग स्किल्स। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, और जैसे दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, वैसे ही रोल रोल पे लिखा होता है एक्टर का नाम। एक्चुअली मैं रोल पहले करने वाली थी डिम्पल कपाटिया, बट एट दैट टाइम उनके पास ना बल्क में डेट्स नहीं थी इस फिल्म को देने के लिए। दो शी वॉन्टेड टू डू द फिल्म बिकॉज उनको स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, तो उनको ना उस समय सागर के लिए रोपिन किया हुआ था सिप्पी साहब ने, एंड शी कुड नॉट गिव डेट्स फॉर दिस फिल्म। एंड देन केम श्रीदेवी जी, जिन्होंने इस रोल को चार चांद लगा दिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं ये फिल्म ना अगर किसी भी चैनल पे आ रही होती है ना, आई अवॉइड सीइंग दिस फिल्म, क्योंकि सदमा ना आपको एक सदमा दे के जाती है। इसका क्लाइमैक्स आपके साथ रहता है फॉर अ कपल ऑफ डेज। यू कीप थिंकिंग अबाउट द फिल्म, यू कीप थिंकिंग अबाउट कमल हसन, यू कीप थिंकिंग अबाउट श्रीदेवी जी। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें, मैं हूँ श्रेया।

0: तो बुढ़ापा आपको दिखाना जाना था मैं। उम्र से ये अब आ नहीं सकता, तो आपके पास अगर बड़ी कृपा होगी बुढ़ापे में कोई किसी की मदद कर देता तो थोड़ी मैं आपकी परेशानी बताना चाह रहा था।
1: क्या परेशानी है?
0: मैं एक तो ये डॉक्टर अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता है।
1: तो वो तो भरता ही है।
0: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
1: अच्छा,
0: ये बुढ़ापे में हो गया ना। पानी पीता हूँ ना मैं जब भी,
1: हाँ हाँ,
0: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
1: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है?
0: प्रॉब्लम नहीं, आपको क्या पता आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
1: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
0: नहीं,
1: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
0: मैं नंबर मेरा एक कजिन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
1: अच्छा,
0: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
1: अच्छा, लेकिन मैं समझ रही हूँ।
0: हाँ, क्या समझ रही
1: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से? मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
0: डॉक्टर सुमिता?
1: हाँ जी,
2: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आज तो मेरा ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही देखा मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा।
1: अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को।
2: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
1: कुकड़ू को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

तमिल में जब ये फिल्म रिलीज हुई थी इसका नाम था मुंद्रम पिराई, और लोगों का कहना है कि फ्रेम टू फ्रेम सेम फिल्म उठा करके रखी गई इन हिंदी। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, मैं बात कर रही हूँ फिल्म सदमा की, जो सबसे पहले तमिल में बनी, उसके बाद इसको हिंदी में बनाया गया। सो अ लॉट ऑफ पीपल से, अ लॉट ऑफ क्रिटिक्स ऑल्सो से कि ये ना ये रीमेक नाम की कोई चीज ही नहीं थी इसमें, इसमें एज इट इज फ्रेम टू फ्रेम काम कराया था। और इसमें भाई तमिल वर्जन में भी ऑफकोर्स श्रीदेवी और कमल हसन थे, लेकिन हिंदी में किसी हिंदी फिल्म के लिए दोनों एक साथ पहली बार काम कर रहे थे, एंड दैट वॉज सदमा। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें आज श्रेया के साथ होती रहेंगी। इन केस आपको मुझे सदमा के बारे में कुछ बताना है, आई एम श्योर अगर आप रेट्रो फैन हैं आपने ये फिल्म देखी होगी, तो डू शेयर योर फीलिंग्स फेसबुक और इंस्टा पे। माय हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHRUYA श्रेया विद लव।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

मूवी के मेकर्स का ऐसा सोचना था कि सदमा फिल्म इतनी चलेगी नहीं। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ इस फिल्म ने तमिल वर्जन में तो बहुत कमाल किया था, लेकिन जब इसको हिंदी में बनाया जा रहा था ना तो सबके डाउट्स थे। डाउट्स इसलिए थे क्योंकि उस टाइम पे 1980s में एक तरफ बच्चन साहब की एक्शन फिल्में आ रही थी, दूसरी तरफ काका की रोमांटिक फिल्में आ रही थी, उसके बीच में इतनी इमोशनल फिल्म जिसका इतना डिप्रेसिव एंड हो। सो द मेकर्स थॉट कि भाई फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं करेगी, व्हिच एक्चुअली हैपेंड। भाई बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा क्राउड उस समय नहीं आया, लेकिन हाँ इस फिल्म ने कल्ट का स्टेटस लिया। एंड स्पेशली आज के दौर में दिस फिल्म इज अ माइलस्टोन दैट एक्चुअली श्रीदेवी जी एंड कमल हसन अचीव्ड। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, सदमा की बातें चलती रहेंगी, कहीं भी मत जाना।

0: पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी गड्डी में बैठो और हवा बहुत अच्छी चल रही है। आज हाईवे पे जाने से पहले गाड़ी के शीशे नीचे करेंगे। आज का मेरा हाईवे हेट मैं उन दीवानों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जो अपने आप को सबसे बड़ा दीवाना मानते हैं अपने प्यार के लिए और कहते हैं
1: मुझसा नहीं
0: इस अंबर के नीचे। अगर आप ऐसे दीवाने हैं तो ये गाना आज आपको सेलिब्रेट करते हुए। रफी साहब की आवाज, मैं हूँ श्रेया, जाने का टाइम हो गया। विल सी यू टुमारो। इन केस मुझसे कुछ कहना है तो फेसबुक और इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव, ये है मेरा हैंडल। Good night.

0: आएगा। ये नए जमाने के सीरियल्स हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो ड्रामास बाबू मोशाय, जो आज के डेट में एक नया वेव लेकर आ गए हैं इंटरनेट पे। वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हो लाइक डॉली सिंह, जिन्होंने काफी टाइम पहले से इन माइक्रो ड्रामास की शुरुआत की अपने पेज पे, या फिर रिसेंटली कुशा कपिला लेकर आए शीबा चड्ढा के साथ लिखे जो खत तुझे। सो या इन अ वे माइक्रो ड्रामास जो है वो एक साथ फेमिलियर फेसेस को लेकर आ रहे हैं हु बिलोंग टू फिल्म फ्रेटर्निटी, टेलीविजन एंड क्रिएटर्स इकोसिस्टम। एंड दिस डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अ ट्रीट, क्योंकि भाई हर तरफ का टैलेंट जब एक साथ मिल जाए तो क्या ही कमाल होगा, वो तो हम देखते ही आ रहे हैं। और अब जब माइक्रो ड्रामास की बात कर ही रही हूँ तो आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो फेवरेट टीवी सीरियल्स हुआ करते थे ना, वो भी अब 90-second एपिसोड्स के रूप में देखने को मिल सकते हैं। यस, सीरियल्स लाइक एजेंट राघव, फियर फाइल्स, जय संतोषी माँ, ये सब अडेप्ट हो रहे हैं फॉर वर्टिकल वीडियो जनरेशन बाय रीपैकेजिंग, री एडिटिंग एंड री इंटरप्रेटिंग फेमिलियर स्टोरीज इनटू शॉर्टर मोबाइल फर्स्ट एपिसोड्स, जो डिजाइन होंगे हुक्स, रैपिड ट्विस्ट्स और क्लिफ हैंगर्स के अराउंड। और इससे मेरे दिल का एक हिस्सा काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि बीइंग अ क्रिएटर मुझे ये फील होता है कि यार इतने बड़े लेवल पे ये सारे सीरियल्स बने थे लेकिन वो आज के डेट में आर्काइवल लाइब्रेरीज में यूं ही सड़ रहे थे। बट थैंकफुली किसी के दिमाग में ये आया कि भाई उन सीरियल्स को वापस से रिजुविनेट किया जाए। वैसे फिलहाल आप अगर कोई अच्छा सा माइक्रो ड्रामा फॉलो कर रहे हैं तो उसका सजेशन मुझे जरूर देना। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स ऑल।

0: Energy. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vida, la burga.
1: Energy, burga. Hello.
2: Mr. Kumar.
1: Yeah.
2: Hello, sir. How are you?
1: Fine.
2: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
1: नहीं, आप बता
2: तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
1: रिगार्डिंग व्हाट?
2: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
1: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
2: सैटरडे चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
1: हाँ
2: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने, एग्जैक्ट टाइम बता दिया मेरे को?
1: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
2: सैटरडे 4 बजे सर, वो सैटरडे 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर, सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
1: हाँ मिलते हैं। हाँ

0: सर सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे। सर कोई और दिन या टाइम बता दो आप प्लीज।
1: देखो यार मैं मंडे ट्यूसडे मैं मुंबई जा रहा हूँ, ट्यूसडे आप एक काम करो मिल लो मुझे।
0: मैं ट्यूसडे किसे कितने बजे सर, ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
1: 7 बजे
0: सर, मंगलवार को 7 बजे। थोड़ा मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
1: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
0: सर संडे कितने बजे,
1: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे।
0: सर संडे 3 बजे दिन में सर, मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
1: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले फिर बताइए।
0: मैं पहले अपना ही निकाल
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। बड़ा ही टीवी फ्रेंडली वर्जन आने वाला है धुरंधर द रिवेंज का, क्योंकि इसका टीवी प्रीमियर होने वाला है विद टर्म्स एंड कंडीशंस सप्लाइड बाबू मोशाय। बेसिकली इस मूवी के लिए सीबीएफसी ने 40-50 कट्स ऑर्डर किए हैं। इसके साथ ये यूए 16 प्लस वर्जन जो टीवी पे आने वाली है वो 10 मिनट छोटी भी होगी एज कम्पेयर टू द थिएट्रिकल कट। बाकी अगर आपके कान खड़े हो गए हैं ये सुनने के लिए कि भाई डेट तो बता दे श्रुति, देन इट इज 18th of October जब धुरंधर द रिवेंज स्टार गोल्ड पे आएगी। आवारापन 2 की ह्यूज सक्सेस के बाद इमरान हाशमी इज ऑन अ डिफरेंट हाई यार, और उनकी नेक्स्ट फिल्म गन मास्टर G9 ने ऑलरेडी ट्रेड इंटरेस्ट अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। एंड फाइनली पेन मधुर ने फिल्म के ऑल इंडिया थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स अक्वायर कर लिए हैं। बाकी फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा जेनेलिया डिसूजा, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक सिंह जैसे एक्टर्स भी होंगे, विच इज सेट टू रिलीज ऑन द 27th of November, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। दृश्यम 3 की एडवांस बुकिंग्स तो आग लगा रही है भाई, आग। अजय देवगन स्टारर दी अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म ने एडवांस बुकिंग्स में 1 लाख से भी ज्यादा टिकट्स ऑलरेडी बेच लिए हैं एंड इज सेट टू रिलीज ऑन द 2nd of October, जिस दिन का इंतजार हर दूसरा विजय सलगांवकर फैन कर रहा है। फिलहाल एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
1: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मगर प्यार से।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं तो मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही थी। आपके दिमाग के घोड़े किधर किधर दौड़े, लगाम लगाइए उसको, जरा पॉइंट पे आइए। बेसिकली यहाँ पे आपको ना मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं कॉल करके आपके साथ इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है राजा जी। हेलो सर, कैसे हैं आप?
2: मैं एकदम बढ़िया हूँ, अब आपसे बात करके और अच्छा।
0: ये लाइन बोलने की जरूरत नहीं थी, बट हाँ चलिए और अच्छा करते हैं आपकी वाइब को। जजंतरम अमंतरम के लीड एक्टर कौन थे?
2: जावेद जाफरी।
0: जावेद जाफरी डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे किस फिल्म में आ जाते हैं?
2: धमाल।
0: क्या बात। धमाल में मानव का भाई कौन है?
2: मानव का भाई अरशद वारसी।
0: क्या बात। अरशद वारसी किस फिल्म में भाई ने बोला करने का, मतलब करने का, ये बोलते हैं?
2: मुन्ना भाई।
0: मुन्ना भाई में डॉक्टर अस्थाना की बेटी से किसको प्यार होता है?
2: संजय दत्त।
0: संजय दत्त किस फिल्म में जुल्मी बड़ा दुखदायक है?
2: खलनायक।
0: गाना याद किया था ना?
2: वही पहले वही आता है।
0: खलनायक में किसकी चोली के पीछे दिल है?
2: माधुरी दीक्षित।
0: माधुरी दीक्षित का घाघरा किस फिल्म में टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है?
2: ये जवानी है दीवानी।
0: ये जवानी है दीवानी में बनी के बेस्टी से किसको प्यार होता है?
2: कल की
0: ओके, पता है। कल्की की किस फिल्म में उनके बैग का नाम बैगवती होता है?
2: बैग का नाम बैगवती होता है। मूवी याद नहीं आ रही।
0: कोई बात नहीं, यहाँ पे हम ब्रेक लगाएंगे और आपको बनाएंगे हमारे आज के पहले

0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: देखो अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा दैट मैं मिर्ची फिल्म की गेम की बात कर रही हूँ, जिसकी शुरुआत आज हमने की थी जूली मैम से। बट शी गॉट स्टक एट अ पॉइंट और उसके आगे का गेम खेलने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है रानू। हेलो जी मैम, कैसी हैं आप और कहाँ से बात हो रही है?
2: हैदराबाद से।
1: ओ वाओ, तो रानू हमारा गेम जहाँ अटका था क्या उसके आगे का गेम आप कंटिन्यू करना चाहोगे?
2: यस यस प्लीज गो अहेड।
1: ऑल राइट, सो द क्वेश्चन दैट शी गॉट स्टक ऑन वाज शाहरुख खान 6 दिनों में लड़की पटाने का टेक्निक किस फिल्म में बताते हैं?
2: कल होना हो
1: में नैना का मेल बेस्ट फ्रेंड कौन है?
2: सैफ अली खान
1: एक पैशनेट म्यूजिशियन ट्रेन पे कस्तो मजा है ले लईबा किस फिल्म में करते हैं?
2: परिणीता
1: में बचपन से सैफ अली खान से किसको प्यार है?
2: विद्या बालन
1: को जिंदगी में एंटरटेनमेंट किस फिल्म में पसंद है?
2: डर्टी पिक्चर
1: में प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है?
2: इमरान हाशमी।
1: यस, इमरान हाशमी की किस गैंगस्टर फिल्म का सेकंड पार्ट आ रहा है?
2: आवारापन।
1: यस, और ये जो पूरी फैमिली ने मिलकर साथ में गेम खेला है एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए, आई रियली लाइक इट।
2: थैंक यू। एक्चुअली हम लोग सारे एक ही रूम में एंड माय डॉटर इज जस्ट 6 इयर्स ओल्ड।
1: ओके,
2: शी इज प्रॉम्प्टिंग व्हाटएवर आई एम सेइंग, शी इज प्रॉम्प्टिंग।
1: ओह,
2: एंड टुडे इज आवर 8th एनिवर्सरी, दैट इज व्हाई माय हस्बैंड इज जस्ट नियर मी।
1: ओह माय गॉड, दैट इज सो स्वीट। विश यू बोथ अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी।
2: Thank you so much.
1: It was so lovely talking to you, ma'am. And of course, the way you have ended the game is amazing. तो इसी बात पे आपको ये टैग तो जरूर दूंगी मैं।
3: मिर्ची फिल्मची।
1: तो बाबू मोशाय, अगर आज का ये मिर्ची फिल्म गेम आपसे मिस हो गया, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, मिर्ची श्रुति के फेसबुक या इंस्टा पे जाके अपना नंबर DM कीजिए एंड रेस्ट आई टेक केयर ऑफ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Kahit Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana! Burga, burga. La vie va la burga.
0: Mirchi, burga!
2: Hello.
3: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रीप्ले भी करेगा, तो आप चाहे तो वो भेज दीजिए चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए। ठीक है, आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
2: बीप। अरे बोल कौन रहा है?
4: अरे बोल कौन रहा है
3: सर, ये वाला भेजने बीप।
2: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
4: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
3: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेजने सर बीप।
2: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
4: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
3: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेजना सर, ये वाला बीप।
2: अरे बावले हो गए हो क्या?
4: अरे बावले हो गए हो क्या?
3: सर एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, ये और करोगे बीप।
2: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
4: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
3: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं लास्ट।
2: ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
4: अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
3: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
2: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
4: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
3: सर ये वाला ठीक है बीप।
2: अबे पागल, ले ले, तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
4: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
3: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
2: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
4: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
3: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
2: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले तेरे में बुद्धि कम है।
4: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
3: सेंट सर, ये वाला गया सेंट। ठीक है सर।
2: अरे भाई किसको भेज दिया?
3: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
2: अबे ओ पागल मॉडल, ये क्या कर दिया, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पागल। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।
5: हिट हिट हिट हिट

0: एक नारी या तो बेचारी या फिर सब पे भारी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से तो जनरली हमें ऐसे ही पिक्चराइजेशंस मिलते हैं इफ वी टॉक अबाउट द फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स ऑफ आर मूवीज। अक्सर दो एक्सट्रीम्स में देखा है हमने उन्हें, या तो बेचारी होती हैं या फिर एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन जिनके पास कोई वीकनेस नहीं होती। लेकिन आज मैं पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू कुछ ऐसी फिल्मों को एक्सप्लोर कर रही हूं जिनमें एक्चुअल में औरतों को समझा गया, उनके फ्लॉज को भी उतना ही एक्नॉलेज किया गया जितने उनके अच्छे एट्रीब्यूट्स को। इन द लिस्ट सबसे पहले हमने बात की पीकू के बारे में। अब नंबर दो पे बात करते हैं फिल्म इंग्लिश इंग्लिश से श्रीदेवी मैम के कैरेक्टर शशि गोडबोले के बारे में। ये फिल्म गौरी शिंदे ने लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है और ये 2012 में रिलीज हुई थी, जिसमें शशि गोडबोले एक होममेकर, एक माँ, एक वाइफ और सबसे इम्पोर्टेंट एक महिला हैं, जिसे धीरे धीरे रियलाइज होता है कि यार घर संभालना उसकी पूरी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। इस फिल्म की ब्रिलियंस ये है कि शशि कोई रिवॉल्यूशनरी कैरेक्टर नहीं है, वो ऑर्डिनरी है। वो घर के लिए लड्डू बनाती है, फैमिली को खुश रखने की कोशिश करती है, लेकिन इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से उसी फैमिली के सामने इनसिक्योर भी फील करती हैं। सो डायरेक्टर गौरी शिंदे ने शशि की जर्नी को लैंग्वेज सीखने से ज्यादा सेल्फ वर्थ डिस्कवर करने की जर्नी बना दी और श्रीदेवी मैम ने बिना ओवर एक्टिंग के एक ऐसी वुमन को प्ले किया जिसके अंदर का कॉन्फिडेंस हम स्लोली स्क्रीन पर वापस आता देखते हैं। इन शॉर्ट, इंग्लिश विंग्लिश रिमाइंड्स अस कि कभी कभी दुनिया को इम्प्रेस करने से पहले खुद को इम्प्रेस करना जरूरी होता है। मूविंग ऑन नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट 2018 में आई फिल्म सर से तिलोत्तमा शोमे के कैरेक्टर रत्ना के बारे में, जो एक डोमेस्टिक हेल्प है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है रोहेना गेरा ने, जहां एक डोमेस्टिक वर्कर रत्ना अश्विन यानी कि एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले इंसान के यहां काम करती है। दोनों के बीच फीलिंग्स डेवलप होती हैं, लेकिन फिल्म का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या ये दोनों प्यार कर सकते हैं। फिल्म पूछती है कि भाई क्या सोसाइटी उन्हें इक्वल समझेगी। एंड डायरेक्टर रोहेना ने रत्ना को सिर्फ एक मेड या लव इंटरेस्ट नहीं बनाया, उसके अपने एम्बिशंस भी दिखाए हैं। वो टेलर बनना चाहती है, अपनी लाइफ बनाना चाहती है और अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। एंड भाई साहब, द काइंड ऑफ एक्टर तिलोत्तमा शोमे इज, उनकी परफॉर्मेंस इतनी रिस्ट्रेन्ड है कि रत्ना को देखते वक्त लगता है कि हम किसी कैरेक्टर को नहीं, किसी रियल वुमन की लाइफ क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये फिल्में अगर अभी भी आपकी वॉचलिस्ट में नहीं है देन प्लीज पुट इट इन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ और बाकी की दो फिल्मों को अभी से कुछ ही देर में वापस डिस्कस करूंगी। सो यू बेटर स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: या तो बेचारी या फिर सब पे भारी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: इन जनरल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी मूवीज आई हैं उसमें महिलाओं को कुछ इसी तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है, या तो वो एकदम बेचारी सी होंगी या फिर स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन जिसके अंदर कोई कमी ही नहीं है, कोई वीकनेस ही नहीं है। बड़ाश पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी फीमेल प्रोटैगनिस्ट को डिस्कस कर रही हूं जिनको देख के एक्चुअली फील हुआ यार ये तो अपनी सी कहानी लग रही है। लिस्ट में सबसे पहले हमने डिस्कस किया पीकू को, नंबर दो पे फिल्म इंग्लिश से शशि गोडबोले को, नंबर तीन पे फिल्म सर से रत्ना को। अब बारी है नंबर चार पे टू डिस्कस अबाउट लापता लेडीज की लेडीज। ये फिल्म आई थी 2024 में, डायरेक्ट किया है इसे किरण राव ने। फिल्म की ओरिजिनल कहानी बिप्लब गोस्वामी ने लिखी है लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स है उन्हें लिखा है स्नेहा देसाई ने। और अगर आप इस फिल्म को सरफेस लेवल पे देखोगे तो आपको दो दुल्हनों की हिलेरियस स्टोरी दिखाई देगी जो ट्रेन में लिटरली एक्सचेंज हो जाती है, लेकिन अंदर से ये फिल्म एक बहुत सिंपल सवाल पूछती है कि अगर एक महिला को कभी खुद से डिसाइड करने का मौका मिले तो वो एक्चुअली चाहती क्या है। फिल्म में दो प्रोटैगनिस्ट्स हैं, फूल और जया। दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आती हैं लेकिन दोनों को अपनी आइडेंटिटी के साथ निगोशिएट करना पड़ता है। फिल्म की डायरेक्टर किरण राव ने फिल्म को प्रीची बनाए बिना ये दिखाया है कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल जाना नहीं होता, अपनी आवाज पहचानना भी एजुकेशन है। जहां फूल का इनोसेंस और जया के एम्बिशन दोनों मिलकर एक ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। यस, लापता लेडीज इज फनी, वार्म एंड डिसेप्टिवली सिंपल, बट अंडरनीथ इट्स अबाउट वुमेन डिस्कवरिंग दैट उनकी जिंदगी उनके हाथों में है। And now, last but definitely not the least, number 5 पे let's talk about Mrs. ये फिल्म आई थी 2025 में, डायरेक्ट किया है इसे आरती काड़व ने, लिखा है हरमन बावेजा के साथ साथ आरती काड़व एंड अनु सिंह चौधरी ने। और फिल्म मिसेस की रिचा प्लेड बाय सान्या मल्होत्रा एक न्यूली मैरिड वुमन है। शादी से पहले उसके ड्रीम्स होते हैं, डांस है, अपनी आइडेंटिटी है, बट शादी के बाद सडनली उसकी दुनिया किचन, एक्सपेक्टेशंस और घर कैसे चलाना है में ही सिमट जाती है। और इस फिल्म की सबसे अनकंफर्टेबल चीज ये है कि यहाँ कोई एक विलन नहीं है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा है। डायरेक्टर आरती ने रिचा को एक एंग्री फेमिनिस्ट स्टीरियोटाइप नहीं बनाया। शी इज इनिशियली एक्साइटेड अबाउट मैरिज, शी वांट्स टू फिट इन, शी वांट्स टू बी लाइक्ड, बट धीरे धीरे उसको भी रियलाइज होता है कि भाई मैं वाइफ बनी हूँ या सिर्फ एक फंक्शन बन के रह गई हूँ। इन शॉर्ट, मिसेस का सबसे पावरफुल क्वेश्चन है कि अगर एक महिला पूरा घर संभालेगी तो भाई उसकी अपनी लाइफ कौन संभालेगा। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: जाएगा।
1: दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। बड़ा ही टीवी फ्रेंडली वर्जन आने वाला है धुरंधर द रिवेंज का, क्योंकि इसका टीवी प्रीमियर होने वाला है विद टर्म्स एंड कंडीशंस सप्लाइड बाबू मोशाय। बेसिकली इस मूवी के लिए सीबीएफसी ने 40-50 कट्स ऑर्डर किए हैं। इसके साथ ये यूए 16 प्लस वर्जन जो टीवी पे आने वाली है वो 10 मिनट छोटी भी होगी एज कम्पेयर टू द थिएट्रिकल कट। बाकी अगर आपके कान खड़े हो गए हैं ये सुनने के लिए कि भाई डेट तो बता दे श्रुति, देन इट इज 18th of October जब धुरंधर द रिवेंज स्टार गोल्ड पे आएगी। आवारापन 2 की ह्यूज सक्सेस के बाद इमरान हाशमी इज ऑन अ डिफरेंट हाई यार, और उनकी नेक्स्ट फिल्म गन मास्टर G9 ने ऑलरेडी ट्रेड इंटरेस्ट अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। एंड फाइनली पेन मधुर ने फिल्म के ऑल इंडिया थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स अक्वायर कर लिए हैं। बाकी फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा जेनेलिया डिसूजा, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक सिंह जैसे एक्टर्स भी होंगे, विच इज सेट टू रिलीज ऑन द 27th of November, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। दृश्यम 3 की एडवांस बुकिंग्स तो आग लगा रही है भाई, आग। अजय देवगन स्टारर दी अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म ने एडवांस बुकिंग्स में 1 लाख से भी ज्यादा टिकट्स ऑलरेडी बेच लिए हैं एंड इज सेट टू रिलीज ऑन द 2nd of October, जिस दिन का इंतजार हर दूसरा विजय सलगांवकर फैन कर रहा है। फिलहाल एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

सितंबर तो खत्म हो चुका दोस्तों, और अब उन सबको ऑफिशियली उठाने का वक्त हो चुका है जो कहते थे वेक मी अप व्हेन सितंबर एंड्स। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी, और जी हाँ अक्टूबर 1st आज मतलब ग्रीन डे फैंस के लिए अलार्म बज चुका है। और मुझे ना ये लाइन हर सितंबर एकदम इंटरनेट ट्रेडिशन लगती थी कि मंथ स्टार्ट होता था कि यार मीम्स चालू हो जाते थे और एंड होते ही एक दूसरे को टैग करके बोलते थे कि उठो भाई अक्टूबर आ गया। और वैसे भी अक्टूबर का मूड सितंबर के मूड से बिल्कुल अलग होता है, थोड़ी ठंड, थोड़ा फेस्टिव एक्साइटमेंट, थोड़ा ईयर एंड का प्रेशर भी क्वाइटली एंट्री मार ही देता है। तो आज मुझे भी बताओ कि सितंबर का एक ऐसा काम क्या था जो आप अक्टूबर में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। नो जजमेंट, क्योंकि हम सबकी अपनी अपनी लिस्ट है। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और जो अभी भी सितंबर मोड में है दोस्तों, वॉल्यूम बढ़ाओ, वेकअप कॉल आ रहा है विद द नेक्स्ट song right here on Mirchi, it's hot।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मिस्टर कुमार।
3: या
4: हेलो सर, हाउ आर यू?
3: फाइन फाइन फाइन।
4: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
3: नहीं, आप बता
4: तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
3: दिस इज रिगार्डिंग व्हाट?
4: बस आपका ना आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
3: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
4: सैटरडे चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
3: हाँ
4: सर, थैंक यू सो मच सर, आई रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने? एग्जैक्ट टाइम बता दिए मेरे को।
3: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
4: सैटरडे 4 बजे सर, वो सैटरडे 4 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर, सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
3: हाँ मिलते हैं।
4: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे। सर कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
3: देखो यार मैं मंडे ट्यूसडे मैं मुंबई जा रहा हूँ। ट्यूसडे आप एक काम करो मिल लो मुझे।
4: मैं ट्यूसडे किसे कितने बजे सर? ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
3: 7 बजे
4: सर। मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
3: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
4: सर संडे कितने बजे?
3: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे।
4: सर संडे 3 बजे दिन में सर? मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है, वो 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
3: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले फिर बताइए।
4: पहले अपने ही निकाल।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

फॉल इज फाइनली फॉलिंग दोस्तों, शाम शानदार लाइक सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, न्यू जर्सी में फाइनली फॉल आ रहा है। वो हवा में हल्का हल्का क्रिस्प फीलिंग, सुबह का थोड़ा कूल टेम्परेचर और ट्रीज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। एंड सडनली इवनिंग ड्राइव भी थोड़ी सिनेमेटिक लगने लगी है, क्योंकि मुझे ना फॉल की सबसे अच्छी बात ही ये लगती है कि सीजन आपको फोर्स नहीं करता कुछ करने के लिए, बस एनवायरमेंट खुद ही थोड़ा और ब्यूटिफुल हो जाता है। कॉफी थोड़ी और बेटर लगने लगती है, वॉक थोड़ी और लॉन्गर हो जाती है, हुडी फाइनली जस्टिफाई होती है, और रोड ट्रिप के बिना भी ट्रीज देखकर लगता है कि यार सीन तो सेट हो चुका है। मतलब मन बिल्कुल ऐसा करता है कि तुम ही देखो ना ये क्या हो गया। तो बताइए, आपके लिए परफेक्ट फॉल मोमेंट क्या है? चाय, लॉन्ग ड्राइव, वॉक, पंपकिन स्पाइस, या बस घर की विंडो से ट्रीज को देखना? डीएमए और इंस्टाग्राम जो मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और वेदर ने तो ऑलरेडी साउंड ट्रैक मांग ही लिया है, तो अगला गाना उसी फॉल ड्राइव मूड के नाम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

इतने सालों में बॉलीवुड के भी कितने सारे नए रूप देखने मिले हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ब्लैक एंड व्हाइट से कलर, सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स, कैसेट से स्ट्रीमिंग, यार बॉलीवुड बदलता गया लेकिन कुछ क्लासिक्स की वैल्यू कभी कम नहीं हुई। और किचन में भी कुछ फ्लेवर्स बिल्कुल ही वैसे ही टाइमलेस है। एक जमाना था जब घर में मसाला हाथों से घिसे जाते थे, प्यार से कूटे जाते थे, धीरे धीरे पीसे जाते थे। धनिया, मिर्च और मसालों की खुशबू किचन से निकल के पूरे घर में फैल जाती थी। और फिर वही चटनी टेबल पर आती और सिंपल सा समोसा, पकोड़ा, सैंडविच या पराठा सडनली कुछ और ही बन जाता था। लेकिन आज तो यार सिलबट्टा हर किचन में नहीं होगा, इतना टाइम भी शायद नहीं होगा, लेकिन वो चटकारा हमें अभी भी चाहिए। और उसी पुराने एहसास को आज के किचन तक लाते हैं दीप चटनी। आज ही नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर से ले आइए, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और क्लासिक्स की बात निकली है तो एक बॉलीवुड क्लासिक तो बनता है दोस्तों, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कॉर्पोरेट दुनिया तो बोलेगी Q4, लेकिन मैं बोलूंगी फेस्टिव क्वार्टर। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अक्टूबर स्टार्ट होते ही कैलेंडर ना सडनली काफी एक्साइटिंग हो जाता है। तब इंडियन साइड पर नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, भाई दूज, और यहाँ अमेरिका में हैलोवीन, थैंक्स गिविंग, क्रिसमस, न्यू ईयर। मतलब यार अगले 3 महीने डेकोरेशन उतरने से पहले दूसरा डेकोरेशन रेडी रखना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा काम है। लेकिन मुझे ना ये Q4 का यही मूड सबसे ज्यादा पसंद है। मतलब एक फेस्टिवल खत्म होता नहीं कि दूसरे की शॉपिंग, फूड, आउटफिट्स, पार्टी और फैमिली प्लान स्टार्ट हो जाते हैं। और NRI लाइफ में तो यही तो बोनस होता है, दो कल्चर्स के फेस्टिवल एक ही कैलेंडर में, मतलब डबल धमाका, डबल मिठाई, डबल कैलोरीज भी। और ऑडिट जनवरी में करेंगे। तो बताइए Q4 में आप सबसे ज्यादा किस फेस्टिवल का वेट कर रहे हो? DM ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फेस्टिव क्वार्टर ऑफिशियली ओपन तो हो चुका है, तो ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड का ये अगला गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

अक्टूबर सुनते ही ना मुझे स्कूल की एक बात याद आती थी कि तब स्कूल का कैलेंडर सडनली कितना इंटरेस्टिंग हो जाता था। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और आज थ्रो बैक थर्सडे है। तो यार बचपन के अक्टूबर की याद आ रही है, मतलब तब जब यार सिर्फ मंथ चेंज नहीं होता था, स्कूल में दशहरा दिवाली की छुट्टियों की बातें शुरू हो जाती थी, नोटबुक्स में कितने पेजेस बचे हैं उसका कैलकुलेशन होता था, घर में साफ सफाई तो शुरू होती थी और मम्मी वो क्लासिक अनाउंसमेंट कर ही देती थी कि इस बार दिवाली में क्या लेना है अभी से डिसाइड कर लो, और फिर स्कूल के फ्रेंड्स के साथ डिस्कशंस होता था, कौन कहाँ जा रहा है इसका हिसाब रखा जाता था, किसने नए कपड़े लिए, वेकेशन होमवर्क कितना मिला। मतलब तब ना हम कैलेंडर एक्चुअली देखते ही नहीं थे, स्कूल की छुट्टियां ही बता देती थी कि फेस्टिवल कितना करीब है। लेकिन आज अक्टूबर के कैलेंडर में मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स से भले ही भरा हो, लेकिन वो स्कूल वाला अक्टूबर याद करो ना तो एक अलग ही एक्साइटमेंट वापस आ जाती है। तो चलिए इस थ्रोबैक थर्सडे मुझे बताइए कि स्कूल के फेस्टिवल हॉलीडेज में आपकी सबसे फेवरेट मेमोरी क्या है। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए थोड़ी देर के लिए कैलेंडर को वो बचपन वाला बना देते हैं एक ऐसे बॉलीवुड गाने के साथ जो स्कूल डेज की प्लेलिस्ट खोल दे। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burca, burca. La virtua la burca.
1: Milci, burca. Alo?
2: Hello, Dr. Savita, se bat kar rahi hai.
1: Dr. Savita bol rahi hu.
2: Doctor, ye ek to budhapa hai, aapko dikhana ja raha tha main. Umar se ye ab aa nahi sakta, to aapke paas agar badi kripa hogi budhape mein, koi kisi ki madad kar deta, to thodi main aapki pareshani batana cha raha tha.
1: Kya pareshani hai?
2: Na, ek to ye doctor, अजीब अजीब ख्याल आते हैं, जैसे मैं कुछ खा लेता हूँ तो पेट भरने लगता है।
1: तो वो तो भरता ही है।
2: नहीं, जैसे और भी इसके अलावा कई परेशानी होती है, जैसे मेरे को नींद आती है तो जब मेरे को सोने का दिल करता है तो मैं सो जाता हूँ यार।
1: अच्छा,
2: ये बुढ़ापे में हो गया ना। पानी पीता हूँ ना मैं जब भी,
1: हाँ हाँ,
2: तो मेरी प्यास बुझ जाती है।
1: तो ये तो बाबा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
2: प्रॉब्लम मेरे, आपको क्या पता, आपका बुढ़ापा है, भगवान ना करे इतनी जल्दी आए।
1: नहीं, मुझे तो लग रहा है आप फर्स्ट क्लास हैं।
2: नहीं,
1: बाकी वैसे मेरा नंबर किसने दिया आपको?
2: मैं नंबर मेरा एक कजन है, उसने बताया था इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर, एक चीज और है, जैसे मैं ब्लड प्रेशर जो है वो कभी कभी नॉर्मल रहता है तो कभी अब नॉर्मल रहता है।
1: अच्छा,
2: कभी भूख लगती है तो कभी नहीं लगती है, कभी नींद आती है तो कभी नहीं आती है, कभी खुजली आती है तो कभी नहीं आती है।
1: अच्छा, लेकिन मैं समझ रही हूँ।
2: हाँ, क्या समझ रही
1: हूँ? प्रॉब्लम तो समझ रही हूँ, लेकिन साथ में ये भी समझ रही हूँ कि आप कोई बाबा बाबा नहीं है। आप नावेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से? मैंने पहचान ली बाबा जी आपकी आवाज, आप नावेद बाबा बोल रहे हैं।
2: डॉक्टर सुविता,
1: हाँ जी,
3: आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आज तो मेरे ही मुर्गा बन गया, मैं भी सोच रही
1: हूँ।
3: देखा, मुर्गा बनाना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, थोड़ा सा
1: अब नवेद आप बोलो आज कुकड़ू को।
3: बिल्कुल, मैं कुकड़ू को बोलूंगा, लेकिन शुरू में आप बन गई थी तो दोनों एक साथ बोलेंगे। 1 2 3
1: कुकड़ू को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट्स हॉट।
5: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
6: कभी कभी ना हम किसी चीज को मेरे तो ये बजट के बाहर है ऐसा कहकर ही शुरू होने से पहले ही फुल स्टॉप लगा देते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और फिर चाहे वेकेशन हो, नई कार हो या लाइफ का कोई बड़ा माइलस्टोन, पहले बड़ा नंबर दिखता है और हम कहते हैं कि यार रहने दो, बाद में देख लेंगे। और दोस्तों, घर खरीदने के ड्रीम के साथ भी ना कुछ ऐसा ही होता है। काफी सारे लोग डाउन पेमेंट का बड़ा नंबर देखकर पहले ही रुक जाते हैं, लेकिन पिक्चर में लो डाउन पेमेंट प्रोग्राम्स भी होते हैं और ऐसे में मॉर्गेज इंश्योरेंस जैसे ऑप्शंस किस तरह से इंक्लूड होते हैं, इन्हें समझना भी जरूरी होता है। और इसीलिए इन्हीं सारे बातों के बारे में हमें और भी बताएंगे मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

अक्टूबर की इवनिंग्स और एक रिमोट, बचपन में इतनी सी चीज भी ना पूरा फैमिली पॉलिटिक्स करा देती थी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज थ्रोबैक थर्सडे में याद आता है कि यार जब घर में एक ही टीवी होता था ना और एंटरटेनमेंट इंडिविजुअल नहीं कलेक्टिव डिसीजन होता था, तब क्या हालत होती थी। क्योंकि पापा को तो न्यूज़ देखनी थी, मम्मी को अपनी रोने वाली सीरियल देखनी थी, और बच्चों को मूवी चाहिए होती थी या फिर कार्टून चाहिए होता था, और रिमोट जिसने पहले पकड़ा उस दिन टीवी का टेम्पररी सीईओ वही होता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि किसी को कुछ और देखना भी हो ना तो भी नहीं, पूरे घर में अक्सर एक ही स्क्रीन के सामने बैठा जाता था और सबको वही देखना पड़ता था जो सीईओ ने डिसाइड किया है। तो आज तो हर हाथ में अपना अपना अलग अलग स्क्रीन है, अपना अलग एल्गोरिदम है, अपनी वॉचलिस्ट है, लेकिन वो कि आज टीवी पे क्या आ रहा है वाली एक्साइटमेंट ही अलग थी। तो चलिए इस थ्रोबैक थर्सडे आप भी बताइए कि आपके घर का रिमोट कंट्रोल किंग या क्वीन कौन था। टेल मी ऑन इंस्टेड RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार मेरे घर का जो रिमोट कंट्रोल क्वीन थी वो थी मेरी दादी, और दादी को हमेशा सत्संग देखना था, तो इसलिए मेरे विचार बहुत ही शुद्ध है और उससे भी शुद्ध मेरे गाने हैं, तो वो बजाऊंगी आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

Yeah, भाई तेरा बस लिखता गाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौको, हंस मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ऐ

पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। शाम शांतालाई सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और पिक्चर छोड़ो, अब ऑडियंस कह रही है कि भाई मेरे पास तो 5 मिनट है, उतने में जो दिखाना है दिखा दो। और एंटरटेनमेंट की दुनिया में यही एक इंटरेस्टिंग चेंज हो रहा है, क्योंकि एक टाइम था जब हम 3 घंटे की बॉलीवुड पिक्चर देखते थे, फिर आया OTT और हमने कहा कि चलो 8 एपिसोड्स बिंज कर लेते हैं। फिर रील्स ने हमें 30 सेकेंड में स्टोरी दिखाने की आदत लगा दी, और अब लग गई तो लग गई है आदत। और अब आ चुका है माइक्रो ड्रामा, मतलब छोटे छोटे एपिसोडिक शोज जहां एपिसोड्स को सिर्फ कुछ मिनट्स मिलते हैं। मेट्रो का वेट कर रहे हो, कॉफी बना रहे हो, लंच ब्रेक हो, 5 मिनट मिले तो निकालो फोन और कहानी आगे बढ़ाओ। और मजे की बात तो ये है कि इंडिया के टॉप 12 फ्री एंटरटेनमेंट एप्स में अब 6 माइक्रो ड्रामा एप्स भी है। यानी ये जो शॉर्ट फॉर्म स्टोरीज है ना, अब नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे ट्रेडिशनल OTTs को जोरदार टक्कर देने वाले हैं। और मुझे सबसे फनी बात तो इसका इवोल्यूशन लगता है, मतलब 3 घंटे की पिक्चर से 8 आवर का बिंज, और अब 5 मिनट ड्रामा। यानी अटेंशन स्पैन छोटा हो गया है दोस्तों, लेकिन ड्रामा का एपेटाइट वो बिल्कुल फुल साइज है। तो आप भी बताओ कि आपको प्रॉपर 2-3 घंटे की पिक्चर चाहिए बिंज वर्दी सीरीज, या 5 मिनट में प्यार धोखा बदला दी एंड भी चलेगा। DM ऑन इंस्टाग्राम @mirchisiddhi @SIDDH आए। और अब शॉर्ट फॉर्म की बातें बहुत हो गई, चलिए अगला गाना पूरा का पूरा सुनते हैं। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है एक ड्रीमी सॉन्ग के पीछे से। जी हाँ, पहला नशा। अब ये गाना आपने पर्दे पे तो देखा ही होगा, तो जब हम ये गाना पर्दे पे देखते हैं ना, तो यार लगता है कि एकदम स्लो मो में चल रहा हो। मतलब आमिर खान और आयशा झुलका के बीच वो ड्रीमी वॉक, एकदम फर्स्ट लव वाइब। पर पर्दे के पीछे की बात तो ये है कि उस वक्त बॉलीवुड में स्लो मो कैमरा टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो डायरेक्टर मंसूर खान ने जुगाड़ निकाला। उन्होंने कहा कि एक्टर्स को ना अब लिटरली स्लो मो में रन और मूव करना है, और बाद में कैमरा स्पीड और एडिटिंग से वो स्लोमो वाला इफेक्ट क्रिएट किया गया। मतलब रोमांस स्क्रीन पे तो बिल्कुल स्मूथ था, और पर्दे के पीछे सब बस धीरे धीरे चल रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में भी ना ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं। वैसे आप भी बताना कि पहला नशा सुन के आपको किसकी याद आती है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Buscaba la, buscaba la, sacaba la. Murga, murga. La viva la murga.
2: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? आपके फोन सर्विस से बोल रहा हूँ सर। ये बीप के बाद ना अपना मैसेज रिकॉर्ड कराइएगा ताकि उसके पैसे मिलने लगेंगे और आप जिसको चाहते हैं अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं। और इसमें होगा जब आप पूरे मैसेज रिकॉर्ड कर देंगे ना वो रीप्ले भी करेगा, तो आप चाहें तो वो भेज दीजिए चाहे फिर दूसरा कुछ रिकॉर्ड करिए। ठीक है, आप रिकॉर्ड करने बीप के बाद करिए।
3: बीप। अरे बोल कौन रहा है?
5: अरे बोल कौन रहा है
4: सर, ये वाला भेज दें बीप।
3: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
5: अरे भाई रॉन्ग नंबर है।
4: अरे भाई रॉन्ग नंबर है, ये भेज दें सर बीप।
3: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
5: अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही, रॉन्ग नंबर है।
4: अरे तुम्हें समझ में नहीं, ये वाला भेजना सर, ये वाला बीप।
3: अरे बावले हो गए हो क्या?
5: अरे बावले हो गए हो क्या?
4: सर एक डिसाइड कर लो ना, बहुत सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, ये भेज दे ये वाला लास्ट, ये और करोगे बीप।
3: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
5: अबे पागलो नहीं भेजना मुझे कुछ।
4: सर आप बहुत बार ट्राई कर रहे हो भेज के, तो देखो ये वाला भेज दूं लास्ट।
3: ओ भाई, अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
5: अरे मुझे नहीं भेजना कुछ।
4: कंफ्यूज हो रहे हैं सर आप, ये वाला सही रिकॉर्ड हो गया था, दूसरा करके देख लीजिए बीप।
3: तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
5: अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मुझे कुछ भेजना ही नहीं है किसी को।
4: सर ये वाला ठीक है बीप।
3: अबे पागल ले ले, तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
5: अबे तेरे पे दिमाग नहीं है क्या?
4: ये वाला पक्का है सर, ये वाला दिस वन सर बीप।
3: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
5: ओ भाई मुझे नहीं भेजना हाथ जुड़वा ले।
4: सर अब आप हाथ जुड़वा लो, एक तो भेज दो बीप।
3: अबे नहीं भेजना, एक बार समझ ले तेरे में बुद्धि कम है।
5: अबे नहीं भेजना, तेरे में बुद्धि कम है।
4: सेंट सर, ये वाला गया सेंट। ठीक है सर।
3: अरे भाई किसको भेज दिया?
4: ये लास्ट आपका डायल, इसमें लिखा हुआ है बॉस।
3: अबे ओ पागल मार, ये क्या कर दिया, मेरी नौकरी चली जाएगी, तेरे को समझ नहीं आता क्या?
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
7: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: शमशाद लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी और स्वागत है आपका थ्रोबैक थर्सडे पे। वैसे दोस्तों इतनी सारी बातें हम करते हैं थ्रोबैक थर्सडे पर, फिर चाहे पुराने टाइम में जब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे या जो पुराने गाने सुनते थे, लेकिन एक चीज हमारे जो गोल्ड डिकोडर सीरीज में बात होती है वो है कि जब हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि यार 20 साल पहले या 10 साल पहले या 5 साल पहले गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो आज कहाँ रेट होते। तो यही जो सारे रियलिटी स्टैट्स है ये देने आते हैं हर थर्सडे को हमारे बॉबी जी फ्रॉम राज ज्वेल्स। तो चलिए बॉबी जी का स्वागत करते हैं और पूछते हैं कि बॉबी जी 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो क्या होता। वेलकम बॉबी जी।
1: देखिए सिद्धि जी नमस्कार, हैप्पी इवनिंग टू एवरीवन। और मैं आपको एक ही चीज बोल दूंगा, जैसे हर पुरानी चीज जो बहुत प्यारी लगती है, जैसे पुराने गाने है ना, जितने पुराने होते जाए उतने प्यारे लगते हैं। इसी तरह से जिन्होंने पुराना सोना ले लिया उनको वाकई बहुत पुराना लगता होगा सिद्धि जी,
0: बिल्कुल
1: बहुत प्यारा लगता होगा। सॉरी, क्योंकि क्या है, आज जैसे गोल्ड 4175 $4,175 पर ट्रायंस चल रहा है, अगर साल की शुरुआत से बात की जाए तो गोल्ड $5,600 पर ट्रायंस ट्रेड कर रहा था। आज भी बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है 4175 पर ट्रायंस। आज भी जो ले लेंगे ना सिद्धि जी, तो आने वाले 5 साल बाद फिर उसी पुराने गानों की तरह बहुत प्यारे लगेंगे कि ये सोने का भाव 4175 में लिया था, अरे बाप रे आज देखो गोल्ड कहाँ पहुंच गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आज ही राज ज्वेल्स पे धनतेरस दिवाली पुष्य नक्षत्र सेलिब्रेशंस के लिए हम तैयार हैं, और हम चाहते हैं कि 0% इंटरेस्ट पे 9 मंथ की फाइनेंसिंग के लिए गोल्ड का प्राइस आप लॉक करके आप ज्वेलरी आज अपने साथ घर लेके जाएं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में राज ज्वेल्स की टीम को पैसे दें। तो आ जाइए मिलके सेलिब्रेट करते हैं राज ज्वेल्स के साथ लिटिल इंडिया ओपी रोड पर।
0: क्या बात है। और बॉबी जी मैंने सुना है कि स्पेशली वो सारे लोग जो पुराने गाने पुराने यादों और नॉट जस्ट पुराने गाने इन जनरल, जो एक जमाना था जब सब एक साथ मिलते थे, एक बहुत ही प्यारा जैमिंग होता था, बॉलीवुड नाइट्स होती थी, वो कल्चर आप वापस लेकर आ रहे हो, तो प्लीज हमारे जो लिसनर्स है जो म्यूजिक के इतने सारे प्रेमी हैं, जो सिंगर्स है, उनके लिए बताइए कि क्या खास हो रहा है राज ज्वेल्स में।
1: देखिए धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, वो गाना सुना है आपने,
0: बिल्कुल
1: तो आपको पहले खबर लग गई हमसे। सो देखिए जैमिंग का इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंड है और राज ज्वेल्स ऑब्वियसली अपने फ्रेंड्स के लिए कम्युनिटी के लिए जैमिंग के लिए तैयार है। बॉलीवुड जैमिंग ये फर्स्ट इन काइंड है लिटिल इंडिया ओपी रोड पर राज ज्वेल्स के साथ। October 10th को आप जैमिंग बॉलीवुड जैमिंग के लिए आ जाइए। इट्स ए फ्री इवेंट, एनीबॉडी कैन कम इन। द मोर देखिए गाने जो एक ऐसे हैं सिद्धि जी, हर एज को हर कम्युनिटी को, का कहीं से हो, पंजाब से हो, साउथ से हो, आपको बॉलीवुड के जो गाने हैं ना वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सबके फेवरेट और दिल को टच करते हैं। और स्पेशली जब आप सबके साथ मिलके गाएं, जो जैमिंग जो नया एक ट्रेंड है, हमने बहुत भक्ति जैमिंग भी देखी है लेकिन हमने स्टार्ट किया है बॉलीवुड जैमिंग के साथ, जिसमें हम सब मिलके अपने दिल से अपने गानों को फेवरेट अपने सिंगर्स के साथ गाएंगे। सो हमने एक छोटा सा स्मॉल इवेंट सेटअप किया है जिसके अंदर October 10th को राज ज्वेल्स के पार्किंग लॉट में 5 to 8 बॉलीवुड जैमिंग होगी। आपके फेवरेट सिंगर्स आपके साथ गाना गाएंगे और आप उनके साथ जैम करेंगे। सो आ जाइए राज ज्वेल्स आपके साथ इस फेस्टिविटीज को सेलिब्रेट करने के लिए तैयार है।
0: क्या
1: सो सिद्धि जी आप भी इनवाइटेड है।
0: थैंक यू बॉबी जी। देखिए जहां म्यूजिक होता है वहां हम पहुंच ही जाते हैं, तो मैं तो जाने वाली हूँ दोस्तों, लेकिन आप भी जरूर मिलने आ जाना। वही पुरानी यादें, वही पुराना जो म्यूजिक का फील है, लाइव म्यूजिक का जो फील है, उसे अगर लाइव एक्सपीरियंस करना चाहते हो, लाइव जैमिंग करना चाहते हो, तो पहुंच जाना October 10th को राज ज्वेल्स के पार्किंग लॉट पर, क्योंकि वहां पर हम सब दोस्त मिलकर गाने बजाने वाले हैं और गानों से बड़ा प्यारा इस दुनिया में कुछ होता नहीं है। तो चलिए सुनते हैं ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। Let's live.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।

वक्त बीत जाता है लेकिन कुछ खास गाने ऐसे बन जाते हैं जो दिल में घर कर जाते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। और 2005 में रिलीज हुई एल्बम बंटी और बबली, यानी 20 साल हो चुके हैं इस एल्बम को, लेकिन आज भी उसके गाने उतने ही रेलिवेंट है। तो आज हमने सोचा कि आज की शाम में ऐसे ही टाइमलेस गानों के बारे में जो कि बंटी और बबली के एल्बम में है उनके बारे में बात की जाए, उनके बारे में कुछ खास किस्से शेयर की जाए। और आज का जो पहला गाना है फ्रॉम दिस एल्बम इज ऑब्वियसली वन ऑफ आवर फेवरेट सॉन्ग्स, कजरा रे। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन एक फ्रेम में एक साथ इसी गाने में नजर आए थे, और सिर्फ कोई ऐसा वैसा गाना नहीं था, एक आइटम सॉन्ग था। तो काफ़ी हिचकिचाहट थी अमिताभ बच्चन के लिए भी, ऐश्वर्या राय के लिए भी, कि शायद उनसे ये गाना नहीं हो पाएगा। लेकिन वैभवी मर्चेंट ने, जो कि इस गाने की कोरियोग्राफर रही है, उन्होंने उनको भरोसा दिलाया कि नहीं यार, ये गाना आप सब लोग बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, इस गाने का सेटअप भी इतने अच्छे से किया जाएगा और ये गाना आइकॉनिक बनेगा, ये विश्वास वैभवी जी को था। इतना ही नहीं, ये वो पहला गाना था जो गुलजार साहब ने एज अ फर्स्ट आइटम सॉन्ग लिखा था। और वैसे तो गुलजार साहब काफ़ी सारे जो इंस्पिरेशन होती है उनके गानों के लिए वो काफ़ी अलग अलग चीज़ों से लेते हैं, लेकिन इस गाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया था कि कोई भी ऐसे डीप चीज़ से इंस्पिरेशन नहीं ली जा सकती। तो इन्होंने जो इस गाने के लिए इंस्पिरेशन ली थी वो थी नॉर्थ इंडियन जो ट्रक्स होते हैं उसके पीछे जो मैसेजेस लिखे होते हैं उससे, जैसे कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। वैसे ही इस गाने में एक लाइन है कि जालिम नज़र हटा ले। और ऐसे ही ये गाना बना वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स रिटन बाय गुलजार साहब। तो जी हाँ, आज सुनते हैं कजरा रे, बंटी और बबली के एल्बम से जो कि 2005 में रिलीज हुई थी, एंड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स शंकर महादेवन की आवाज़ में। और वैसे तो कजरा रे के काफ़ी सारे सिंगर्स रहे हैं, मतलब जावेद अली, शंकर महादेवन, अलीशा शिनाई, और लेकिन ऑफकोर्स उसका जो एंड पार्ट है जिसमें वो गाते हैं कि तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली में, छोड़ा आए कहानी दिल्ली में, तो जी हाँ, ये जो पार्ट है वो मेरा भी फेवरेट पार्ट है। आई होप आपको भी ये गाना पसंद हो, और आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ दैट टाइमलेस एल्बम, विच इज़ दैट टाइमलेस सॉन्ग जो आप हमेशा सुनना पसंद करते हो। टेल मी ऑन आरजे मिर्ची सिद्दी, SIDDHI। और फिलहाल आज बंटी और बबली के गानों के बारे में बात होगी, तो विच मीन्स कि ये जो कजरा रे गाना है ये हमारे लिस्ट का पहला गाना है। तो और भी गाने आने वाले हैं, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड में हीरो सिर्फ प्यार ही नहीं निभाता, जिम्मेदारी भी निभाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और चाहे कभी खुशी कभी गम का राहुल हो, स्वदेश का मोहन, यार असली हीरो तो वही होता है जो अपनों के लिए हमेशा खड़ा रहे, कभी घर लौटकर तो कभी दूर रहकर भी हर जरूरत का ख्याल रख के। क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फोन कॉल से ही नहीं चलती, कभी कभी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सपोर्ट की भी जरूरत होती है। और उस सपोर्ट का सबसे आसान तरीका होता है घर पर पैसे जल्दी और बिना टेंशन के पहुंच जाना, और इसीलिए टैप टैप सेट यानी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में भेजिए इंस्टेंट मनी ट्रांसफर्स, ग्रेट एक्सचेंज रेट्स और जीरो ट्रांसफर्स फी के साथ, यानी नो वेट एंड नो हैसल। डाउनलोड द टैप टैप सेंड ऐप टुडे, सेंड मोर एंड स्पेंड लेस। और अब एक गाना जो अपनों की याद हमेशा दिला ही देता है, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

वक्त बीत जाता है लेकिन कुछ ऐसे खास गाने बन जाते हैं जो दिल में घर कर जाते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और हमारी बातें हो रही है कि यार बंटी और बबली के एल्बम को, जो कि रिलीज हो चुकी थी 2005 में, इस एल्बम को हो चुके हैं 20 साल, लेकिन आज भी उसके गाने उतने ही पॉपुलर है, उतने ही अमेजिंग है। और कजरारे के बारे में तो हमने बात की, लेकिन वन ऑफ द अदर सॉन्ग्स दैट आई एब्सोल्युटली लव इज धड़क धड़क। जी हाँ, ये गाना गाया है उदित नारायण जी ने और सुनिधि चौहान ने, कंपोज्ड बाय नन अदर देन म्यूजिक मेस्ट्रो शंकर महादेवन। और ये गाना जब बन रहा था तब इसकी जो फिल्मिंग होने वाली थी, तब डिसाइडेड था कि ये गाना बनते हुए इसकी फिल्मिंग जो रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन के जो होम टाउन्स है, रिस्पेक्टिव होम टाउन, जो कि छोटे शहर है, वहाँ पर ही होनी चाहिए, क्योंकि यार तब लोगों को लगता था कि बड़े शहरों वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही कूल होते हैं। एंड ये पूरा नैरेटिव इन्होंने डिसाइड किया था कि चेंज करना है, नहीं, क्योंकि छोटे शहरों से भी जो छोटी छोटी बातें होती है, जो छोटा छोटा फैशन सेंस होता है, वो अमेजिंग होता है। और ये जो गाना बनाया गया था वो लिखा भी इसी तरीके के लिए गया था, इसी सीक्वेंस के लिए गया था कि छोटे छोटे शहरों से, आधी भोल दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। तो जी हाँ, ये बहुत ही प्यारा सा एक ऐसा गाना बनाया गया था जिससे हमें हमारे उन छोटे छोटे शहरों की याद आती है जहाँ से हम आए हैं। तो इस गाने की ये खासियत तो थी ही, बट इतना अमेजिंगली ये गाना नॉट जस्ट गाया गया है बल्कि फिल्म भी किया गया है। तो इसी याद में आज इस गाने को प्ले करते हैं। वैसे बंटी और बबली एक ऐसा आइकॉनिक एल्बम है जो हमारे लिए काफ़ी स्पेशल है इवन आफ्टर 20 ईयर्स, लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जो आपको बहुत पसंद है, जिसको 20-25 साल हो चुके हैं बट आज भी रेलिवेंट है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और बंटी और बबली का और एक गाना जो मेरा फेवरेट है वो मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूं, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हेलो
1: मिस्टर कुमार।
0: या
1: हेलो सर, हाउ आर यू?
0: फाइन।
1: मुझे आपका नंबर दिया था ये विक्की भैया जो है ना, विक्की भैया साउथ एक्स में। मैं तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप बड़े आदमी हैं।
0: नहीं, आप बता
1: तो आप अगर मेरे को दो मिनट भी दे देंगे सर, मैं दो मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।
0: रिगार्डिंग व्हाट?
1: बस आपका ना, आपके सजेशन चाहिए। मैं सर कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ छोटा मोटा, बस आपसे दो मिनट के लिए मिलना है, बस दो मिनट के लिए।
0: आप यार सैटरडे 4 बजे आप मिल लो यार।
1: साढ़े चार बजे सर। थैंक यू सर, आप ही के ऑफिस में आ जाऊं?
0: हाँ।
1: सर थैंक यू सो मच सर, आई रियली अप्रिशिएट इट सर। सर कितने बजे बताया आपने? एग्जैक्ट टाइम बता दिए मेरे को।
0: 4 बजे आप सैटरडे आ जाइएगा।
1: सैटरडे 4 बजे सर, वो 4:30 बजे मेरी बुआ आ रही है, मुझे उनको लेने जाना है रेलवे स्टेशन ना। तो सर बाकी इसके बाद आप कभी भी टाइम बताएंगे ना सर, मैं कह रहा हूँ मैं दुनिया के सारे काम छोड़ दूंगा सर, सिर्फ आप चाहे 1.5 मिनट के लिए मिल लो सर, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट के लिए सर।
0: हाँ मिलते हैं।
1: हाँ सर, सैटरडे के अलावा वो आ रही है, वरना मैं जरूर आता 4 बजे सर। कोई और दिन भैया टाइम बता दो आप प्लीज।
0: देखो यार मैं मंडे ट्यूसडे मैं मुंबई जा रहा हूँ। ट्यूसडे आप एक काम करो, मिल लो मुझे।
1: मैं ट्यूसडे किसे कितने बजे सर? ट्यूसडे आप मेरे को बताइए।
0: 7 बजे
1: सर। मंगलवार को 7 बजे मुझे थोड़ा अपने बच्चे के इंजेक्शन लगवाने जाना है सर। आप 7 बजे के अलावा कभी भी सर, कभी भी।
0: अरे यार फिर आप मेरे घर आ जाओ यार संडे को।
1: सर संडे कितने बजे?
0: संडे आ जाओ आप दिन में 3 बजे।
1: सर संडे 3 बजे दिन में सर? मैं सर थैंक यू, आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी। संडे 3 बजे सर, हमने वो एक्चुअली टिकट बुक कर रखा था, तो मूवी देखने जा रहे हैं मैं वाइफ और बच्चे, तो 3 बजे का शो है वो, 5 बजे तक तो चलेगा। तो सर इसके अलावा आप कभी भी बुला लो, कभी भी बुला लो।
0: अरे पहले तू अपना टाइम निकाल ले, फिर
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

वक्त बीत जाता है लेकिन कुछ खास गाने ऐसे बन जाते हैं जो दिल में घर कर जाते हैं। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज बातें हो रही है कुछ टाइमलेस गानों के बारे में। और 2005 में यानी 20 साल पहले रिलीज हुई एल्बम बंटी और बबली के यार सारे गाने अमेजिंग हैं। मतलब 20 साल हो चुके हैं लेकिन इस एल्बम के तो एक से बढ़कर एक गाने हैं। और कजरारे के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, धड़क धड़क इस गाने के बारे में हम बात कर चुके हैं। द थर्ड सॉन्ग इन दिस एल्बम विच इज़ रियली ब्यूटिफुल इज छुप छुप के, जिसे गाया गया है सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर ने। वैसे यार इस गाने की एक खास बात है कि एक रोमांटिक सॉन्ग तो है ही, एक बहुत ही ब्यूटिफुली कंपोज सॉन्ग है, लेकिन इस गाने को जब रिकॉर्ड किया गया था तब शंकर महादेवन ने इसकी रिकॉर्डिंग कम से कम 3 बार रुकाई थी बीच में, क्योंकि यार तब वो गाना इतना ब्यूटिफुली रिकॉर्ड हो रहा था कि गाने के बीच में ही उनको गूज बम्स आ गए और उनका जो पार्ट था, उनका जो कंपोजिशन था, बीच में ही समवेयर वो अमिस हो गया एंड उस वजह से उनको ये गाना 3 बार ऑलमोस्ट रोकना पड़ा। तो जी हाँ, इतना ब्यूटिफुल कंपोजिशन है छुप छुप के फ्रॉम बंटी और बबली का एल्बम विच वॉज मेड इन 2005। यार 20 साल हो चुके लेकिन आज भी ये गाना उतना ही ब्यूटिफुल है, उतना ही टाइमलेस है और उतना ही हमारे दिल में घर कर चुका है। वैसे ऐसा कोई और गाना है, ऐसा कोई और एल्बम है तो आप अपने सॉन्ग रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो, टाइमलेस सॉन्ग जो आपके दिल में आज भी है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए बंटी और बबली का छुप छुप के राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एक बात तो माननी पड़ेगी कि न्यू जर्सी की समर ना घर में बैठने के लिए बनी ही नहीं है। शमशांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है, फिर चाहे फार्मर्स मार्केट हो, फूड फेस्टिवल्स हो, बीच ट्रिप्स, इवनिंग वॉक्स, कॉन्सर्ट्स, काउंटी फेयर्स, या बस मौसम को देखते रहना। वैसे यार आजकल ना मन करता है कि घर थोड़ा लेट ही चलता है, क्योंकि समर की सबसे प्यारी बात ही ये होती है कि प्लान्स ना बहुत बड़े होने की ज़रूरत नहीं। कभी एक आइसक्रीम, कभी एक पार्क की वॉक, कभी बस कार की विंडोज डाउन करके बॉलीवुड सुनते हुए ड्राइव, और शाम यादगार बन ही जाती है। तो इस हफ्ते न्यू जर्सी चैलेंज ये है कि एक नई जगह ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, और अगर आपके पास कोई हिडन जेम हो, फिर चाहे वो कॉफ़ी शॉप, पार्क या सनसेट स्पॉट हो, तो मुझे ज़रूर बताइए। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHR। और चलिए न्यू जर्सी की इस खूबसूरत समर इवनिंग को बॉलीवुड के सुरों से और भी रंगीन बनाते हैं विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
1: अब

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। एंड चलिए, अब वक्त आ चुका है फॉर मी टू से टाटा, बाय बाय, सायोनारा टू यू। लेकिन आप कहीं ना जाइए, क्योंकि थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची। इट्स हाउ।